0: Singapore, prepare for impact.
1: 3, 2, 1.
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: They were not chosen.
4: They were created.
5: Maa ka naam Jaan ki tha. Hum ise Sita bulavenge.
6: Alpha.
3: The newest chapter in the YRF spy universe.
7: But is baar Sita aaj Lanka khud chalane aayi.
3: Alia Bhatt and Sharvari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
8: Alpha program uska junoon hai. जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है.
3: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.
9: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स. मस्ती का मंत्र विद आरजे हंत्रा.
10: सलमान खान के करियर का सेकेंड 300 करोड़ डोमेस्टिक ग्रॉसिंग अचीवमेंट इस मूवी के साथ. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मैं अंतरा आपके साथ. 8 बजकर हो चुके हैं 17 मिनट. मस्ती का मंत्रा चल रहा है एंड इट वाज जस्ट आई थिंक फ्यू वीक्स बैक व्हेन वी वर सेलिब्रेटिंग 25 इयर्स ऑफ द मूवी लगान एंड वी वर टॉकिंग अबाउट कि कैसे वक्त कितनी जल्दी निकलता हुआ जा रहा है. एंड देखिए ना, 10 साल हो चुके हैं इस मूवी को भी, जिसका नाम है सुल्तान. मैं हारा नहीं हूं, राइट? जग घूमया थारे जैसा ना कोई. टू बी वेरी ऑनेस्ट, वन ऑफ द सलमान खान मूवीज विच वॉज रियली रियली नाइस. द स्टोरी वॉज नाइस, द स्क्रीन प्ले वॉज नाइस, द गानाज वर क्वाइट नाइस, सलमान खान की एक्टिंग वॉज नाइस. कुछ ऐसी कहानियां जो होती है ना, जो आपको यू नो you can rewatch it again if you want to. And it was so different from at that point of time. Ek comparison shuru hua tha Dangal ke saath ki dono saath saath mein release ho rahi hai, you know, but dono ki itni different storylines thi ki koi compare karne ka tukki nahi banta tha. But well, 10 saal ho gaye and yes, everybody is celebrating Sultan completing 10 years aaj ke din mein. So bhai, hum itna ye jo hai पूरा का पूरा इन्होंने जो तैयार किया था, अपनी बॉडी को तैयार किया था अपने, यू नो, एक और अली अब्बास जफर जो इनके डायरेक्टर साहब है, उन्होंने तो ये मान के ही चला था, जैसे स्क्रिप्ट उनके पास आई थी, ये तो सलमान खान ही करेंगे, ये नहीं करेंगे तो ये मूवी बनेगी ही नहीं. दैट वॉज वन. एंड इनिशियली इंस्टेड ऑफ रणदीप हुडा, जो कि इसमें आपको फतेह सिंह के रोल में, उनके कोच के रोल में जो है नजर आए हैं, संजय दत्त, या he was originally the selection for that role of coach. ये project के काफी initial time की बात है, but production team eventually जो है उन्होंने cast किया रणदीप हुडा को, क्योंकि दत्त साहब जो है उन्होंने withdraw कर लिया due to personal legal obligations and उनके scheduling conflicts वगैरह आ रहे थे. Not only this, आफ्रा अली खान जो कि which is played by अनुष्का शर्मा, that role was supposed to be done by Kangana Ranaut, but उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसी कोई मूवी उस टाइम पे नहीं करना चाह रही थी. वो जो कि एक मेल डोमिनेटेड, लाइक मेल लेड स्टोरी हो, शी वॉन्टेड टू डू समथिंग विच वॉज लाइक फीमेल लेड काइंड ऑफ स्टोरी. एंड इवेंचुअली शी डिड ऑल्सो, बिकॉज उसके बाद उन्होंने क्वीन की, विच वेंट ऑन टू बी एब्सोल्यूटली अमेजिंग. वेल, सुल्तान मूवी जो है, आई थिंक सलमान खान के 500 या 600 करोड़ वाले बिल्कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी जाते हैं, बट आजकल 100 करोड़ का इतना मतलब नहीं है. बट इट्स बीन क्वाइट अ वाइल दैट इवन सलमान खान हैज गिवन अस अ मूवी लाइक सुल्तान एंड द एक्टिंग लाइक दैट. वी ऑल आर वी स्टिल वेटिंग? Let's not go over there. But yes, kudos to them for a movie like that. And yes, celebrating these 10 years and with this gana as well. Shadab Faridi ki awaaz along with Sukhvinder Paji. Oh my God, jab ye baja tha na, aur iska piche ek jo iska running beat hai, it gives you so much of energy. Let's go this morning on Radio Masti 24/7 Live.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
3: जीजी
2: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
3: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर।
4: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
5: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
6: बाजू
7: ट्रैफिक अपडेट।
8: आइए ये सीधा चलते हैं 8:31 नहीं, बात करते 8:32 जब हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक बे रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। इट्स टाइम फॉर ट्रैफिक अपडेट। हैवी ट्रैफिक आपको इस वक्त मिलेगा ऑन KJE टुवर्ड्स PIE एट ब्रिकलैंड रोड एग्जिट। हैवी ट्रैफिक की खबर ऑन PIE टुवर्ड्स उठवास एट टोकवा रोड एग्जिट। एन ऑब्स्टिकल मिलेगा ऑन SLE टुवर्ड्स BKE आफ्टर अपर थॉमसन रोड, सो अवॉइड करे लेन नंबर 3। वेल कमिंग अप नेक्स्ट इज SPB की अमेजिंग आवाज में वो गाना जो हमारे एटलीस्ट 90s वालों के दिल के काफी जो है तार छेड़ देता है। लेट्स लिसन टू इट टुगेदर ऑन दिस ब्यूटीफुल ट्यूसडे मॉर्निंग।

सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 live pe. भाई किंग खान अलग थलाइवा बने हुए हैं, वो मैं बताती हूँ क्यों। 9 बजे के उस पार बिल्कुल आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ यहाँ पर, एंड लुंगी डांस करते हुए है हमारे किंग खान। I think manifestation जो है has got real power, क्योंकि जिस बंदे ने मुंबई में खड़े होकर कहा था कि मैं पूरी दुनिया पे राज करूंगा, उसने किया and he is continuing to do so. अब आप कहोगे कि कोई मूवी तो आ नहीं रही है, ठीक है किंग की बात चल रही है, बट जब वो रिलीज होगी तब रिलीज होगी, लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा शाहरुख खान का कुछ कहीं पे नाम नहीं आ रहा है and all those things. मैं बताती हूँ यहाँ पर जो है पीछे पीछे काफी सारा काम चल रहा है। So along with the Knight Riders का group, शाहरुख खान यानी कि हमारे SRK has officially unveiled the Knight Riders cricket ground California में। It's a world class international standard का cricket stadium worth around $21 million. Yes, that is right. सर ने cricket stadium खड़ा कर दिया है। What's even more incredible is that it was just built in about 100 days. This is the first ever dedicated international standard stadium owned by a global cricket franchisee. भाई KKR तो हमारे SRK की है, right? And it will now become the permanent home of Los Angeles Knight Riders. So SRK jo hai, he said something really beautiful. He said that ground is not just for cricket, it's for families, entertainment, memories and bringing people together. Bhai baate jo hai, शाहरुख खान से अच्छे तो कोई कर नहीं सकता। He's a charmer with the words, like seriously. मुझे लगता है that's exactly what sport is also all about. Cricket has always been this huge, चाहे वो इंडिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, इंग्लैंड में हो, but now it's growing rapidly in United States as well. So in fact, ये जो stadium है is expected to play a big role as cricket prepares for अपना historic return to the Los Angeles 2028 के Olympics में, after 128 years जहां पे हमारे Indian women's cricket team already qualified kar chuki hai. That's right. So think about it. Ek Bollywood superstar ka sapna and us sapne se cricket ko mil gaya ek naya ghar. That's the power of the common name. उनके मूवी में था ना चेन्नई एक्सप्रेस में, वो वाला डायलॉग थोड़ा सा स्लिप इन हो गया। दैट्स द पावर ऑफ विजन। सक्सेस जो है सिर्फ अपने लिए कुछ जीतने में नहीं होती है, सक्सेस इज क्रिएटिंग समथिंग दैट थाउजेंड्स ऑफ अदर्स विल एंजॉय लॉन्ग आफ्टर यू आर गॉन एज वेल। बाय कूडोस टू हिम भाई, एंड आई थिंक ही हैज गॉट ऑल द बैकग्राउंड स्कोर्स रेडी फॉर हिम, ऑल थैंक्स टू हिज अमेजिंग करियर विच ही हैज हैड। आई एम गोइंग टू प्ले द वन विच आई थिंक सूट्स हिम राइट हियर राइट नाउ ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
0: आपकी नॉलेज आपकी जीत।
3: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
4: Subha ki dose of fun and facts. Namaste ka mantra with RJ Hantra.
5: ऑफिशियली जो इस गाने को नाम दे दिया गया है शाबा, दिस इज जस्ट अमेजिंग राइट। कोई सफाया नहीं बुलाता, कोई भी नहीं। जितने लोग रेडियो मस्ती सुनते हैं ना, या फिर जितने लोग मुझे और रेणुका को जानते हैं, वो सब इसको शाबा ही बुलाते हैं। दैट इज द पावर ऑफ ऑडियो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं मंत्रा आपके साथ 9:00 हो चुके हैं 18 मिनट, मस्ती का मंत्रा चल रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब सोचिए दैट इफ यू कॉल आपके बॉस एंड जस्ट कॉल पे आपने कहा कि यू वांट टू टेक अ सिक डे एंड रेस्ट एंड रिकवर। अगर आप जर्मनी में हैं, दैट माइट सून नॉट बी इनफ। दैट इज करेक्ट भाई। जर्मनी की गवर्नमेंट का कुछ ऐसा अपडेट आया है, दे हैव प्रपोज्ड दिस मेजर चेंज टू इट्स सिक लीव का रूल्स। अंडर उनका ये वाला जो प्रपोजल है, एम्प्लॉयज वुड नो लॉन्गर बी एबल टू सिंपली कॉल इन सिक और रिलाय ऑन अ फोन कंसल्टेशन। इंस्टेड फ्रॉम डे वन ऑफ बींग अनवेल, दे वुड नीड टू गेट डॉक्टर का सर्टिफिकेट। क्यों ये चेंज की बात हो रही है? क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है जर्मनी has been seeing very high levels of sick leaves and ye believe kiya ja raha hai ki stricter rules could help improve productivity and support country's slowing economy. Proposal jo ye wala hai is a part of much larger economic reform package jo ki announce kiya chancellor sahab ne, but not obviously everyone is convinced. Doctors association jo hai wo keh rahe hai ki bhai hold on, ये जो उनका वरी है, दिस कुड मीन कि भाई क्लिनिक्स जो है गेटिंग फ्लडेड विद पीपल हु हैव माइनर कफ्स, या फिर कोल्ड थोड़ा सा हो गया, या कोई यू नो फीवर थोड़ा सा आ गया, ऐसा कुछ हो गया। पीपल हु वुड अदरवाइज हैव सिंपली स्टेड होम रेस्ट एंड रिकवर्ड, वो अब वहां पर आ जाएंगे। एंड सम ऑल्सो फियर इट कुड इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग इन्फेक्शंस इन द वेटिंग रूम्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात दैट ये अभी फाइनल लॉ नहीं बना है, इट्स स्टिल अ प्रपोजल एंड हैज टू गो थ्रू इनके जर्मनी के legislative process get through before it becomes official. What do you think about this? Should employees be trusted to take a day off jab wo call karke kehte hain that they are not well, ya fir doctor ka note should be compulsory from day one? Kya kehte ho aap is bare mein? मुझे बताएं जरूर 9151-8963 पर। वाइल यू लिसन टू ऑल द अमेजिंग गानास आई प्ले फॉर यू दिस मॉर्निंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। गुड मॉर्निंग।

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट
2: That was Suzanne DeBello की आवाज and after a very good long time मैं ये गाना सुन रही थी और आपने ये गाना सुना on Radio Masti 24/7 Live 9:28 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में आइए आपको बताया जाए इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा on CTE towards SLE at Silitar Westlink exit एक एक्सीडेंट की खबर on SLE towards CTE after Woodlands Avenue 12 avoid करें lane number 1 एक और एक्सीडेंट की खबर on PIE towards Adwas after KJE ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट गाने का अपडेट कुछ ऐसा है दैट कबीर सिंह के साउंड ट्रैक से सचेत एंड परंपरा कमिंग टुगेदर विद दिस ब्यूटीफुल वन ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव स्टे ट्यून्ड

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning.
4: They were not chosen. They were created.
5: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
6: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
7: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई।
6: Alia Bhatt and Sharvari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
8: Alpha program उसका जुनून है, और जो भी उसके रास्ते में आता है, वो उसे मार देता है।
6: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July, island-wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.

0: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
1: आपने लास्ट पान कब खाया था? आपको ओके कि अचानक से where did this पान come from? रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रॉप के साथ मस्ती का मंत्रा चल रहा है. 9:35 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में. भाई पान जब भी मैं खाने जाती हूँ, अगर कानपुर में भी जाती हूँ, कानपुर में तो ऐसा है कि हमारी एक फिक्स्ड पान वाले भैया की दुकान है एंड ही नोज बिकॉज ही हैज बीन देयर फॉर सो सच अ लॉन्ग टाइम एंड ही नोज अस. एंड उनको ना आज भी याद है कि किसको किस तरह का जो है अच्छा लगता है पान. सो माय थिंग इज मेरे पान में हमेशा गुलकंद बहुत ज्यादा रहता है बिकॉज आई जस्ट काइंड ऑफ लाइक द फ्लेवर ऑफ इट. सो दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी एसेंशियल थिंग ओवर देयर. मुझे एक टाइम पर, मुझे हाल ही में इनफैक्ट पता चला कि भाई गुलकंद के खुद के इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं पर्सनली एंड आई वॉज लाइक वॉट रियली. भाई नेचुरल कूलेंट है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है, देन आपकी एनर्जी जो है उसको बूस्ट करता है, फटीग रिड्यूस करता है एंड देन you know headaches or because it's rich in antioxidants so ye jo stress or ye burning sensations hai in sab pe bhi and it also helps in detoxifying the body so much so and yeah I was like ki bhai ye to fir aur thoda sa zindagi mein isko lana chahiye to maine kuch nahi kiya, maine kiya type ggmartonline.com. wahan pe 300 gram ka ye gulkand ka ek dabba milta hai which is around $2.3 and it is good. Okay, I recently made something out of it and I was like very very impressed. मैं खुद पे ही, मैं कभी भी ऐसे खाने में कुछ बहुत ही ज्यादा कमाल का बना देती हूँ तो मुझे खुद पर बड़ी प्राउड वाली फीलिंग आती है. सो वेल इफ यू वॉन्ट इट ओवर हियर इन सिंगापुर और आप चाहते हो कि घर कोई डिलीवर कर जाए तो ऑफकोर्स जीजी मार्ट ऑनलाइन है ना, आप वहां पर जा सकते हैं. नॉट ओनली दैट, इनके जामुन ट्राइंगल्स आई हैव बीन रेविंग अबाउट इट, समथिंग वेरी डिफरेंट राइट. जब आपके घर में कोई मेहमान वगैरह आते हो, यू हैव दीज अमेजिंग फ्लेवरफुल क्रिस्पी मेल्ट इन योर माउथ. मतलब जामुन का फ्लेवर तो वैसे भी कमाल का होता है. नॉट ओनली दैट, द नट्स एंड क्रिशिबल नट्स की वैरायटी जो कि अब मेरे किचन के रैक में सबसे सामने बिल्कुल रख दिया गया है. इनफैक्ट ये हमारी शाहिद की बीवी का नाम क्या है, हाँ मीना, मीरा शी वॉज ऑल्सो शोइंग द सेम थिंग लेटेस्ट उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पे दैट हाउ शी हैज केप्ट ऑल द नट्स एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ हर सो दैट जब हेल्दी स्नैकिंग का मूड हो तो फिर ऐसा किया जा सके कि सामने सामने ये सारी हेल्दी चीजें ही हाथ में आए. सो जाए क्रिशिबल नट्स जो है जो कि एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक है, व्हेन इट्स कमिंग फ्रॉम ggmartonline.com इट हैज टू बी दैट वे. कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कुछ नहीं, just flavorful things getting delivered at your doorstep. So next time when you think about nuts, crushable nuts, think about ggmartonline.com. jaiye register kariye and order kariye.

0: Are you ready?
1: Are you ready?
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
4: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं।
5: द आर जे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for application form.
6: Namaste, bhaiyon aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: प्रगति का मंत्रा विद आरजे अंतरा।
1: एआई आज की डेट में क्या कुछ नहीं कर सकता है, और ये तो फिर कुछ भी नहीं है उसके सामने। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतरा आपके साथ मस्ती का मंत्रा चल रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। अनुष्का शर्मा के ड्रेस को लेकर जो कंफ्यूजन चल रहा था उसका खुलासा करते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा, इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का मैच था एंड हमारे विराट कोहली अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा के साथ वो मैच देखने गए। वहां वो मिले शिखर धवन और उनकी वाइफ सोफी से, एंड सोफी जो है उन्होंने एक ग्रुप ली जहां पर ये चारों के चारों खड़े हुए हैं, एंड अनुष्का शर्मा इज सीन वेयरिंग दिस लॉन्ग ये लैवेंडर कलर का एक ड्रेस। एंड वहीं पे इन द सेम मैच स्टेडियम से एक और पिक्चर जो है क्लिक होकर बाहर आई, जहां पे वही सेम ड्रेस थी लेकिन वो ड्रेस शॉर्ट थी एंड लॉन्ग नहीं थी। तो अब बस इतनी सी बात पे लोगों की क्यूरियोसिटी हो गई पीक। लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये क्या कुछ अलग टाइप का ड्रेस है जो मार्केट में आया हुआ है। एक ही जगह पर अनुष्का शर्मा इतनी जल्दी, मतलब ड्रेस तो सेम ही लग रही है, व्हाट हैपेंड? बड़े दिनों बाद और बहुत सारे सवालों के बाद जो है सोफी यानी कि शिखर धवन की वाइफ शी केम आउट विद द राज का खुलासा। कुछ हुआ ऐसा था कि कई बार ये सारे चीजें जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपने ट्राई किया होगा। सो इनकी जो फोटो थी, जिन्होंने फोटो खींची थी वो फोटो ढंग से नहीं खींची थी, तो इनके ना टांगे काट दी गई थी, लाइक दे क्रॉप्ड ऑल देयर लेग्स। तो फुल लेंथ प्रोफाइल पिक्चर जो है लेने के लिए सोफी जो है उन्होंने एआई का यूज लिया। सो एआई ने उनकी अनुष्का शर्मा की शॉर्ट ड्रेस को लॉन्ग ड्रेस कर दिया, एंड दैट वॉज द ओनली राज जिसका हुआ खुलासा। So basically, वो लॉन्ग ड्रेस थी AI, and जो उन्होंने पहनी हुई थी ओरिजिनली, that was a short dress. Wow, आजकल ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं। But yeah, a lot of people do it, right? AI से चीजें रिमूव कर सकते हैं, AI को यूज करते हुए चीजें ऐड कर सकते हैं, and you know, आपका बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल, it's just crazy, and just स्पीड से ही और ज्यादा अपग्रेड होता हो जा रहा है, वो उससे भी ज्यादा क्रेजी है। लाइक my mind just get blown away every single time. Well, mind blowing का ना एक और चलाए, ये भी गाना जो मैं प्ले करने वाली हूँ बहुत दिनों से मैंने अपने प्लेलिस्ट पे नहीं प्ले किया है, so I am gonna play that title track of Mushkil coming up next on Radio Masti 24/7 Live.

0: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
1: Love is a waste of time. No, it is not. And specially जब मेरा प्यार आपकी तरफ हो तो बिल्कुल waste of time नहीं है. Problem यही वाली आ जाती है कि time है जो है वो बिल्कुल निकलता हुआ जा रहा है यहाँ से और मेरा भी निकलने का time हो गया है. That is right. आपके साथ Tuesday morning spend करके काफी मजा आया. बस एक घंटे का cafe का break, फिर हमारी निपुरवा जो है वो यहाँ पर आ जाएंगी and then आपसे वापस से मुलाकात होगी आज शाम Dear मस्ती दिल से शो पर. So make sure that you tune in 5 PM onwards as well. फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत. यू हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड. बहुत ही प्रोडक्टिव भव, एफिशिएंट भव एंड स्माइल से भरा हुआ भव. बाय बाय, टेक केयर.

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ड्यूटी पर।
0: Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 live, a part of Musty Media Network Singapore.
3: Check it out.
4: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में? वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: सुनो ए, तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है?
1: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
2: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
3: चल

0: किसकी याद सताए जनाब, अकेलापन रात का तो हम है ना। रोज रात रेडियो मस्ती पर 11 बजे से। ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बन के रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
1: रात अकेली है।
2: जोश में रहो, जोश में रहो।

0: नमस्कार सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
3: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
4: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे। पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: Welcome to your chill zone. Musti Music Cafe. Only music, only musti.
1: उड़ गए तोते, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते, उड़ गए तो

0: सुबह सुबह शोर मचा रखा है। बंधु हो, तुम ही हो, सखा हो, ये हो, वो हो। सुबह अभी अभी भजन का एक घंटा खत्म हुआ है। थोड़ा आराम से, थोड़ा स्लो, थोड़ा स्टेडी, थोड़ा धीरे, लेकिन नहीं आते तुम ही दिन
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती
2: मैडनेस। लो जी आ गए, बड़े बड़े पवित्र पावन लोग आ गए हैं यहाँ पर फ्राइडे वाले सुबह सुबह मस्ती मैडनेस करने के लिए। हमें तो पहचान में नहीं आ रहे हैं, हमें नहीं जरूरत है सुबह सुबह 7 बज जाते हैं तो सबको पता होता है कि कोई यहाँ पर कोई भी, वैसे भी कोई भी इतना कोई शुद्ध है नहीं, जितने लोग सुन रहे हैं वो भी नहीं
0: और जो बनने की कोशिश कर रहे हैं वो भी नहीं है ना। गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग, दिस इज मस्ती मैडनेस, दिस इज रेडियो मस्ती 24/7, दिस इज मस्ती मीडिया नेटवर्क, दिस इज रेणुका, दिस इज अंतरा एंड एंड दिस इज फ्राइडे।
2: फाइनली शी रियलाइज्ड
0: सपने में मिलती है ओ कुड़ी, सपने में मिलती है। अंतरा, जो सपने में मिलती है वो हकीकत में मिल जाए तो बात ही अलग है, राइट? व्हाट डू यू थिंक?
2: तभी तो उसको कहते हैं ना सपना।
0: हाँ, जो अभी अभी ट्यून्ड है ना ऑलरेडी, आई एम श्योर। रेडियो मस्ती 24/7, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू शो गाइस। दिस इज ऑफ कोर्स, आज ये तारीख क्या हो गई है यार, 3 तारीख हो गई है, 3 तारीख जुलाई की।
2: हाँ जी,
0: है ना।
2: हाँ, आप जुलाई के इस पावन मौसम में कुछ कहना नहीं चाहेंगी?
0: मैं यही कहना चाहूंगी कि देखो, मतलब अभी अभी की बात है, 6 महीने खत्म भी हो गए, आधा साल खत्म भी हो गया, है ना, वही जो हम हमेशा बोलते हैं। हाँ,
2: यस।
0: चलो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आके बड़ी सारी बातें बतानी है इनको। हाँ ठीक है।
3: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

0: और सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: मुझे मेरी लाइफ में ना कुछ अनअटेम्प्टेड टास्क करने हैं। अब आप कहोगे जैसे क्या? जैसे स्क्वैश, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, स्विमिंग, ये वो, मतलब ऐसा मैं सोच रही हूँ यार, खतरों के खिलाड़ी टाइप लाइफ होनी चाहिए। इतनी क्या बोरिंग, मोनोटोनस, सिंपल, सोबर, एक सेट पैटर्न में हम लोग चल रहे हैं। ना ना ना ना, कुछ तो गड़बड़ है दया। सो हेलो, हाय, मैं आरजे पर मसी मॉर्निंग शो पर वंस अगेन मुलाकात करने के लिए आ चुकी है। एंड हम सबकी लाइफ में ये वाली गड़बड़ तो है ही है कि हमने जो आज किया है वो कल करेंगे, परसों करेंगे, नर्सों गैप ले लेंगे, तरसों फिर वो करने लगेंगे। तो लाइफ में थोड़ा फन डालना पड़ेगा यार। आजकल पता क्या हो गया है, अभी मैंने कल परसों की बात है, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कल परसों की बात है, और तारीख थी कुछ 12-15 है ना, और आज देखो यार कितनी ज्यादा दिन हम आगे निकल आए हैं। मतलब हु कैन से कि आज 7 तारीख है दोबारा से। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कल ही तो मैंने पूछा था और कल किसी पिछले महीने की 12 तारीख थी। ओ माई गॉड, टाइम तो गोली की स्पीड से आगे बढ़ता जा रहा है। हाँ? कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, टाइम को रोकना पड़ेगा। हाँ, चलिए रुकते रुकाते बहुत सारे अमेजिंग गाने रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मेरे यानी आरजे नुपुर के साथ आने वाले हैं मेरी जान। सो डोंट गो एनीवेयर बिकॉज़ बहुत कुछ हैपनिंग सा माहौल चल रहा है हर जगह।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning.
4: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
5: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
4: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
5: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
6: जीजी
5: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
6: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में रहो।
2: देखो आप कुछ भी कपड़े सिंगापुर में पहनकर निकल जाए, एक चीज कॉमन तो मिलेगी ही मिलेगी, आप चाहे जितना इन्वेस्टमेंट कर दे, एंड दैट इज व्हाइट स्निकर्स, है ना। अपने यहाँ सबसे कॉमनली पसंद करने वाली चीज जो है दैट इज व्हाइट स्निकर्स। आप इसमें कुछ फैशन ट्रेंड नया एड ऑन कर ही नहीं सकते। बाय द वे, आप और हम समझते हैं यार कि फैशन से पहले कम्फर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगापुर की वाइब में कंफर्ट ज्यादा जो है वो प्रायोरिटी रखा जाता है। एनीवेज, मैं आज ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कंफर्ट से ज्यादा ग्लैम दुनिया को प्रायोरिटी दी जाती है। हाँ, रिसेंटली सनी देओल ना अपनी एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली मूवी के प्रमोशन के लिए

0: आपकी नॉलेज आपकी जीत।
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
0: They were not chosen. They were created.
2: माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
3: Alpha.
0: The newest chapter in the YRF spy universe.
4: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई।
0: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडिया फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल, वेयर एवरी डिसीजन कुड

ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। यू नो व्हाट, अगर आपको अपनी लाइफ में हेल्दी खाना खाने की या हेल्दी साइड्स क्रिएट करके कंज्यूम करने की आदत नहीं है तो आपको मेरे साथ एक महीना रहना चाहिए। सुबह सुबह प्रोटीन शेक से लेकर रात के सैलेड तक हर चीज में मेरा मतलब थोड़ा सा ना वो हो चुका है, क्या एक्सपर्टीज हो चुकी है, मैं हर चीज को हेल्दी बना देती हूँ, राइट। मैं आज इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। अगर आप भी हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट कर चुके हैं, मीनवाइल आप घर बैठे बैठे ग्रोसरी भी मंगवाना चाहते हैं, तो ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं GGMartOnline.com के साथ। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि प्रीमियम आपको नट्स मिल जाएंगे, रोस्टेड एंड सॉल्टेड पिस्ताचियोज 100 ग्राम के $2 मिल जाएंगे, हेजल नट्स मिल जाएंगे, पम्पकिन सीड्स मिल जाएंगे और प्रीमियम रेजिंस, मखाना, एवरीथिंग जो आप बोलोगे ना सब कुछ मिल जाएगा। प्लस आप माउथ फ्रेशनर की तरह ना इनका गुलकंद भी ट्राई कर सकते हैं, राइट। 100% प्योर एंड नेचुरल शुगर से बना, सो डेफिनेटली आपको ये स्वाद नॉस्टैल्जिक फील कराएगा। GGMartOnline.com विजिट करो फॉर फर्दर डिटेल्स। आज है नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: Are you ready?
1: Are you ready?
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ
4: शाम की चाय हो ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ
4: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर
5: जीजी
4: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com प्रीमियम कैश्यूज कैलिफोर्निया आमंड्स पिस्ताचियोस पम्पकिन सीड्स मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com
5: ggmart your personal grocer

0: जयपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में रहो।
2: सबको पता चल गया है कि एक कपल ने प्रपोज कर दिया है न्यूयॉर्क में 1500 फीट की ऊंचाई पे जाकर। ओह माय गॉड, सिंगल लोग बहुत दुख में चल रहे हैं कि यार हमें कोई क्यों नहीं ऐसा मिल रहा जो हमारे लिए सात समुंदर पार करके आ जाए यार। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। तो दुनिया में एक तरफ तो सोशल मीडिया पे ये चीजें ट्रेंड हो रही है और दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूंगी चाइना। राइट, चाइना कुछ वर्ल्ड में पहली बार करने वाला है। ओहो, चाइना में होगा तो असर सिंगापुर तक जरूर आएगा। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। वर्ल्ड का पहला फुल्ली रोबोट ऑपरेटेड होटल जो है ना, वो चाइना में 2027 में ऑपरेटिव हो जाएगा। ओ माय गॉड, मतलब रिसेप्शन पे, हाउसकीपिंग पे, रूम सर्विस में, फूड प्रिपरेशन में, गेस्ट असिस्टेंट से लेकर हर एक तरह की हॉस्पिटैलिटी में आपको वहां रोबोट्स नजर आने वाले हैं। ओ माय गॉड, आप देखो चाइना में ऐसा ऐलान हो गया है तो सिंगापुर में भी आई थिंक एक आध रेस्टोरेंट तो है जहां पे पिज्जा जो है ना या कोई डिश जो है ना वो लेकर आई जाते हैं रोबोट, है ना, मतलब मिलता जुलता मामला निकल आता है। राइट, चलिए मिलते जुलते वो गाने जो आपकी चॉइसेस से बहुत मिल रहे हैं, वो गाने जस्ट इन अ शॉर्ट वाइल मेरे यानी आरजे नुपुर के साथ मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

देखो, पॉकेट तो सबकी बड़ी हो जाती है बाय द टाइम अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन दिल भी तो बड़ा होना चाहिए खर्चा करने के लिए, वरना कहने को तो क्या है, बैंक अकाउंट में जीरो जीरो राइट साइड में ऐड होते जाएंगे। हाँ, पर आपका दिल होना चाहिए खर्चा करने का, और ऐसा दिल किसका है, किसका है, मतलब कोई तो एक ऐसा एक्टर है जो अक्सर बहुत नरम दिल की बातें कर लेता है और हम उनको अपना दिल दे बैठते हैं। He is कौन? शाहरुख खान, right? शाहरुख खान की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। And recently director फरहा खान ने पता है क्या बताया कि कुछ साल पहले हैप्पी न्यू ईयर मूवी जब आई थी और उसका प्रीमियर दुबई में रखा गया था, तो कास्ट एंड क्रू को दुबई ले जाने के लिए फ्लाइट के टिकट्स फिल्म मेकर्स ने नहीं दिए थे, शाहरुख खान ने खर्चा किया था। क्यों? क्योंकि उनका मन था कि पूरी टीम पहुंचनी चाहिए, मजे होने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप हल्के में बतलो, मतलब आप जैसे ही हल्के में शाहरुख को लेने लगते हो ना, तब तक कोई ऐसी बात निकल कर आ जाती है कि आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि नहीं नहीं शाहरुख है तो अच्छे हैं, जेन्युइन है। चलो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं मेरे यानी आरजे रूपर के साथ। कुछ जेन्युइन बातें जिसके बारे में आप सिर्फ सोच रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल जवाब के साथ बताऊंगी। डोंट गो एनीवेयर, आती हूं मैं जस्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल।

0: डॉग रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: They were not chosen.
3: They were created. Maa ka naam Jaan ki tha. Hum ise Sita bulaenge.
4: Alpha.
0: The newest chapter in the YRF spy universe.
5: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई।
0: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडियाज फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट।
6: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है।
0: बोर्न टू फाइट बिल्ट टू सर्वाइव। अल्फा रिलीजिंग 3rd जुलाई आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट।
7: हो तो हरी लचके जब कमरिया हसारा जिला हिल।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
2: रहो। आपको भी कभी किसी ने ऐसा टोका है क्या कि सुनो सुनो सुनो लड़ाई मत करो, ना ना ना ना लड़ाई वड़ाई मत करो, ऊपर वाले को याद करो, ऐसा करके समथिंग समथिंग समथिंग पूरा नरेशन और आपको शांत कर दिया गया। हा? मतलब पहले ना लड़ने में भी मजा आता था, क्यों? क्योंकि सुबह हमारी कट्टी होती थी और शाम को मिलन हो जाता था, मतलब ज्यादा वक्त तक नाराजगी रहती नहीं थी। लेकिन अब फिल्मों का असर ऐसा पड़ा है हम पे कि हम सामने वाले को ब्लॉक कर देते हैं, नंबर डिलीट कर देते हैं, अनफ्रेंड कर देते हैं और पता नहीं क्या क्या बदला निकालने के लिए कर लेते हैं। यार नहीं नहीं नहीं, नहीं थामा थामा थामा, आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ एनीवेज, फिल्मों में गुस्सा दिखाया जाए तो चलता है क्योंकि वो रियल नहीं है ना, रियल है।

हुए सूरज को तो हर कोई सलामी देता है। हां जी, मतलब बढ़िया काम करो ना तो हर कोई आपको बुलाएगा कि जरा इधर आना, जरा इधर आओ ना, हाँ प्लीज। चलो ठीक है भाई, मौके का फायदा सलमान खान तो उठा रहे हैं, लेकिन आप कभी मौके का फायदा उठाते हैं क्या? अच्छा, आपकी नजर में वो कौन सा ऐसा एक्शन सीन है किसी मूवी का जो सबसे बेहतरीन आपको लगा हो? Do tell me यार, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे डीएम करके आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network,

0: We're opening a safe space, dear masti, dil se, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
2: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए, समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
4: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: सुन टकाटक। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: यू नो व्हाट, आज से कुछ साल पहले इंडिया से सिंगापुर शिफ्ट होना इतना मुश्किल भी नहीं था, बिकॉज इंडिया की सड़ी गर्मी ह्यूमिड वाली और उसके बाद सिंगापुर की गर्मी भाई मैच कर गई यार, होमली फील देती है ये हमें, आप हल्के में मत लो। आरजे नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, और मुझे अब लग रहा है भैया यूरोप से भी लोगों को बुलाया जाए जरा सिंगापुर में। भाई पेरिस में जिस तरह से गर्मी का प्रकोप दिखाया जा रहा है, तो वाटर मिस्ट जो है ना वो सड़कों पे बौछारों की तरह डाले जा रहे हैं, एंड अभी तो जो टेम्परेचर है वो 30s में ही चल रहा है और वहां पे ये हालत निकल कर आई है। एंड डेफिनेटली मतलब चीजें फेस करना फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम या रेयरली ये जो सिचुएशन है तो मुश्किल होता होगा, लेकिन अब वहां के बड़े बड़े शोरूम्स में जहां हर टाइम एसी चलता रहता है लोग वहां फालतू भी बैठने लगे हैं और अपनी गर्मी मिटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। चलो ठीक है भाई, लोग अपने अपने तरीके से देसी तरीके से अपनी गर्मी मिटाने के तरीके ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपकी बोरियत मिटाने के तरीके सिर्फ हमें पता है मस्ती मीडिया नेटवर्क को। राइट, सो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नूपुर आपके साथ, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: Singapore, prepare for impact.
4: 3, 2, 1.
5: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में रहो।
2: सो स्लोली एंड स्टेडली मूवीज से रिलेटेड हर छोटी बात चार दीवारी के बाहर आ जाती है। पहले जब सोशल मीडिया नहीं था तो गुपचुप तरीके से मूवी डिस्कस होती थी, होल्ड पे चली जाती थी, ठंडे बस्ते में चली जाती थी, खत्म हो जाती थी। नोबडी केयर्स कि भैया बनी कि नहीं बनी, अगर बन गई है तो रिलीज हो ही जाएगी, मतलब उसका तो कुछ है नहीं खास रोल पर। लेकिन अब मूवी का हर स्टेप का जो प्रोग्रेस है ना, वो सोशल मीडिया पर निकल निकल कर आता है और हमें भी दिलचस्पी आ ही जाती है जानने में कि बनी है कि नहीं बनी है। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है एंड बताना चाहूंगी हेरा फेरी मूवी का थर्ड पार्ट बन रहा है नहीं बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है, इसकी हर छोटी बड़ी अपडेट जो है ना वो सोशल मीडिया पे आ जाती है।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

आप तो यार चेहरे से ही इंटेलिजेंट लगते हो। नहीं नहीं मतलब आप बताओ मुझे, जनरल नॉलेज में आपके कितने मार्क्स आते थे? 10 out of 10? ओ तब तो भाई आप पार्टिसिपेट कर लो यार। और यही नहीं, आपको हिस्ट्री का भी ज्ञान है, दुनियादारी का भी ज्ञान है, सिंगापुर का भी ज्ञान है, मास्टर माइंड आपका सिनोनिम है। तो बस डेफिनेटली मस्ती मीडिया नेटवर्क आपके लिए लेकर आ चुके हैं द लायन सिटी चैलेंज। आप कह सकते हैं सिंगापुर का स्मार्टेस्ट गेम शो, जहां पे आपके साथ साथ आपकी नॉलेज जो है ना वो जीतने वाली है, अकेले अकेले नहीं। हाँ सो डेफिनेटली इस गेम में पार्टिसिपेट करने के कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन है, और सबसे पहला स्टेप ये है कि आप हमें टेक्स्ट भेजे टाइप करके LION, और नंबर है 9151893। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप, और फिर हमारी तरफ से जो सवाल पूछे जाएंगे उनके आपको उसी पर्टिकुलर टाइम में जवाब देने होंगे जो उसके रूल्स में लिखे हुए हैं। फिर देखते हैं आगे क्या करना है। धीरे धीरे से पत्ते खुलेंगे द लायन सिटी चैलेंज के। आरजे अनुप्रमस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: कृषि वाल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
4: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं।
5: द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
6: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
2: रहो। हमारे आसपास अच्छे लोग होते हैं, बस उन्हें ढूंढने की या उन पर ध्यान देने की देर होती है। Hi, myself RJ Nupur and Radio Masi 24/7 Life पर मैं आपके साथ हूँ और बताना चाहूँगी कि यार अल्फा विमेन मैंने भी देखी है। डेफिनेटली हर औरत जो है वो अपने आप में बेहतरीन होती है, लेकिन आई रिमेम्बर आज से शायद 3-4 साल पहले की बात है जब मैं ड्राइव कर रही थी और किसी का मेरे आगे से आगे वाली गाड़ी का ना एक्सीडेंट हो गया और मैं जब तक एक्शन लेने का कुछ सोचती, मतलब उतर के किसी की हेल्प लेने का सोचती, तब तक मेरी बगल वाली कार में जो फीमेल ड्राइवर थी ना वो पार्क करके उतर जाती है और भाग कर उस गाड़ी में जाती है, जो शख्स है उसे बाहर निकालती है, उसका फ़ोन वगैरह खंगालने लगती है और सबको रोकती है कि नहीं नहीं रुको रुको हेल्प करनी है। मतलब वो मेरा ये मोमेंट था कि मैंने उस लेडी के लिए सोच लिया यार शी इज़ अल्फा यार शी इज़, मतलब वो ऐसा बेंचमार्क है यार कि इंसान इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा, राइट? तो आपने भी अपनी लाइफ में अल्फा वुमेन देखी होंगी, पहचानी होंगी, अपने आसपास मौजूद होंगी, सो व्हाई नॉट उनका जिक्र किया जाए। क्यों? डेफिनेटली इसीलिए बिकॉज सिनेमा घरों में बॉक्स ऑफिस में आ चुकी है अल्फा मूवी। आलिया भट्ट एंड शार्वरी वाघ स्टारर, ये मूवी अपने आप में बहुत खास है, विमेन एम्पावरमेंट की डायरेक्शन में आपको एक नया एग्जाम्पल देगी यार। सो आप अक्रॉस द आइलैंड इस मूवी को देखने के लिए जा सकते हैं, विच इज ब्रॉट टू यू बाय होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट। मीनवाइल आपका एक जवाब कि आपने अपनी लाइफ में कौन सी अल्फा वुमेन नोटिस करी है, ये आपको जितवा सकता है अल्फा के टिकट्स का रिम्बर्समेंट, राइट? फर्स्ट 10 लकी विनर्स को हम उनकी टिकट्स रिम्बर्स करके दे रहे हैं रेडियो मस्ती।

0: Are you ready?
1: Are you ready?
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 91518963.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
4: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Musti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for an application form.

यू नो व्हाट, आप फेमस हो जाते हो, आप लोगों को पसंद आने लगते हो, तो पसंद आना आसान है, पसंद आते जाना और लगते जाना बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली मैं आरजे अनुपम मसी मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स, सिंगर्स या साइड कैरेक्टर्स, पॉलिटिशियंस शुरुआत में तो हमें बहुत अच्छे लगे, लेकिन बाय द टाइम हमारा उनसे मन उठ गया कि अरे यार कैसे है ये लोग, पहले क्यों नहीं पता चला, हाँ इस बार भी हमारी चोट हो गई। सो मैं आरजे अनुपम मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड अगर बात करें जैस्मिन सैंडलर्स की, जिन्होंने धुरंधर मूवी के गानों से ओ हो एक नया लेवल अप कर लिया है, लोग उनके कॉन्सर्ट्स अटेंड करने लगे हैं, लेकिन रिसेंटली कुछ कॉन्सर्ट्स में इनकी बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी हुई है, राइट? बताना चाहूंगी, अभी इनका रिसेंट एक हैदराबाद में कॉन्सर्ट था, उसमें ये पहले तो 2.5 से 3 घंटा लेट पहुंची, और लेट पहुंचने के साथ इन्होंने हर गाने पर लिप सिंकिंग करी, जो कि साफ पता चल रहा था, और उसके बाद बिना अपॉलोजी के ये गायब भी हो गई, तो लोगों ने इन्हें बड़ी खरी खोटी सुनाई कि नहीं नहीं नहीं नहीं, ये लड़की ठीक नहीं है, मजा नहीं आया, पैसा भी गया, ये भी गया, वो भी गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ओ माई गॉड। तो आजकल रिस्क लेना भी बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। आरजे अनुपम मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू, that too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form. Good morning.
3: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
0: द न्यूएस्ट चैप्टर इन द YRF स्पाई यूनिवर्स।
4: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई।
0: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडियाज फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल, वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट।
5: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है।
0: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island wide at the cinemas near you. Brought to you by Homescreen Entertainment.

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: भाई एक घर से दूसरे घर शिफ्ट होना कितना पैनिकिंग होता है यार। मतलब इधर का सामान उधर जमाना, ये करना वो करना, और उससे भी बड़ी चीज ये होती है कि इमोशनली आप इस घर से जुड़ चुके हैं, अब दूसरी जगह जाकर इमोशंस डेवलप करना, ओह दिक्कत तो ये होती है, बाकी सब तो सेकेंडरी है यार। सो हेलो हाय, मैं आज यूनिवर्सिटी मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड अभी घर का जिक्र चल रहा है, हर तरफ चल रहा है, किसके? सलमान खान के, राइट। एंड सलमान खान जो है पिछले 52 साल से 52 ईयर्स से जिस घर में रह रहे थे, जिस गैलेक्सी अपार्टमेंट से हेलो बाय बाय और बुलेट्स भी चली है वहां पे, राइट, उस घर से अब शिफ्ट हो रहे हैं हाई सिक्योरिटीज की वजह से 6-story बिल्डिंग में। हाँ जी, उनका नया घर तैयार हो रहा है और उसकी अप्रूवल भी मिल गई है और बहुत जल्द ही अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। और अभी तक एक छोटे से फ्लैट में ये रह रहे थे अपनी फैमिली के साथ। तो ठीक है भाई, कुछ घर ना बहुत लकी होते हैं, आपका छोड़ने का मन नहीं करता है कि ना ना ना ना ना ना इस जगह को छोड़ के गए ना तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। चलिए ऑन दिस नोट मी आरजे नूपुर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। अब मुलाकात होगी बहुत जल्द। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। एंड बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। सी यू पोस्ट 5 PM, क्योंकि डियर मस्ती दिल से शो पर आपका हम इंतजार करते हैं।

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
2: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
3: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत
1: ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़।
4: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
5: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
6: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय।
7: नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे।
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
0: चेक इट आउट

0: Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Are you ready?
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
0: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो।
1: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन, फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: किन्निया किन्निया गल्ला वे तू करदा है।

0: पेट्रोल ते पवाए नी।
1: कोई गल नी, साड़ी गड्डी ते गुडवेल नाल चलती है।
2: Welcome to your chill zone. Musty Music Cafe. Only music, only musty.
3: Ladies and gentlemen.
4: Let me tell you the story of Mr. Sutro. 1, 2, 3, stop.

0: सस्वीकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट।

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
4: पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
5: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
1: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ट्यूटर पर।
0: Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
3: Check it out.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: 3, 2, 1।
1: और रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है।
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
1: Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Musty Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Musty 24/7.

0: आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे,
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में
3: रहो। सुबह सुबह शोर मचा रखा है, बंधु हो, तुम ही हो, सखा हो, ये हो, वो हो। सुबह अभी भजन का एक घंटा खत्म हुआ है। थोड़ा आराम से, थोड़ा स्लो, थोड़ा स्टेडी, थोड़ा धीरे, लेकिन नहीं आते तुम ही दिन
4: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज
5: मेरे करण अर्जुन आएंगे
6: ना, करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे। सर हाँ, तो सर सुपर

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: You got to.
1: एक पुरानी हिंदी कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कितनी छोटी सी लाइन है ना, लेकिन अगर इसे थोड़ा सा रुक कर सोचा जाए तो शायद पूरी जिंदगी समझ में आ जाए। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से है, ऑफिस में, रिलेशनशिप में, फैमिली में, करियर में, लेकिन सच तो ये है कि सबसे बड़ी लड़ाई हम रोज अपने ही मन के साथ लड़ते हैं। क्या मैं इनफ हूँ? क्या मैंने सही डिसीजन लिया? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या मैं कभी खुश हो पाऊंगा? और पता नहीं क्या क्या। कभी कभी इन सवालों का जवाब हमें किसी एक्सपर्ट के पास नहीं मिलता, बस किसी ऐसे इंसान के पास मिलता है जो बिना बीच में टोके हमें सुन ले। और शायद इसीलिए हमने डियर मस्ती दिल से इसकी शुरुआत की। ये है वही आपका वो सेफ स्पेस। हेलो, हाय, नमस्ते, अ वेरी वार्म वेलकम टू डियर मस्ती दिल से, जहां आप अपने दिल की कोई भी बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई जजमेंट नहीं, कोई लेबल्स नहीं, और सबसे जरूरी बात, कंप्लीट एनोनिमिटी। यहां नामों से ज्यादा इमोशंस को हम अहमियत देते हैं। आपके लिए हम डियर मस्ती, और हमारे लिए आप, दैट्स राइट, डियर लिसनर। बस इतना ही सा रिश्ता है हमारा। अगर आपके दिल में भी कोई बात है जो आप किसी से शायद नहीं कह पा रहे हो, तो हमें आप लिखकर भेज सकते हैं 9151896 पर, या फिर कोई भी एक आईडी ईमेल की क्रिएट करके आप वहां से भेज दें, listener@radiomasti.com.sg पर। हर लेटर को हम पूरी सिंसियरिटी के साथ पढ़ते हैं और हर इमोशन को पूरी इज्जत के साथ सुनते हैं। तो चलिए एक और शाम दिल की बातों के नाम, यह डियर मस्ती दिल से। बस अभी थोड़ी देर में वापस आती हूँ विद आवर वेरी फर्स्ट लेटर ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। स्टे ट्यून्ड।

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
0: क्रिशिवल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो वेलकम टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। वेल यहाँ पर जो है एक चिट्ठी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। क्विक रिकैप देते हुए हमारे एक डियर लसना ने हमें लिखा है कि उन्हें और एक लड़के को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, लेकिन उन्होंने अभी रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं किया क्योंकि वो अपनी लाइफ को थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहती है, लेकिन वो लड़का पहले ही उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करने लगा है और सबके सामने वो काफी पजेसिव बिहेव करता है। और उनका सवाल ये था कि मैं उसे ये बिना हर्ट किए कैसे समझाऊं। सो माय डियर लिसनर, सबसे पहले तो एक बात, आपका रिलेशनशिप नहीं चाहना या अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी ना होना किसी को रिजेक्ट करना नहीं होता, और किसी को पसंद करना कमिटमेंट दे देना भी नहीं होता। हम अक्सर इन दोनों चीजों को एक ही समझ लेते हैं जबकि दोनों बिल्कुल अलग अलग है। देखिए, हेल्दी रिलेशनशिप्स की फाउंडेशन सिर्फ प्यार नहीं होती है, क्लैरिटी भी होती है। और आपने जो है अक्सर ये वर्ड सुने होंगे, मिक्स्ड सिग्नल्स क्रिएट मिक्स्ड एक्सपेक्टेशंस। सो हो सकता है आपने कभी इंटेंशन से कुछ गलत ना किया हो, लेकिन अगर आप दोनों ने कभी बैठकर ये डिस्कस ही नहीं किया कि हम एग्जैक्टली किस स्टेज पर है, तो नेचुरली जो है कोई अपनी तरफ से वो स्टोरी अपने दिमाग में बना लिया होगा और आपने अपनी तरफ की स्टोरी अपने लिए क्लियर रखी होगी, और फिर दोनों को लगेगा कि भाई सामने वाला बदल गया। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, मुझे लगता है आपको उससे एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए, लेकिन उस कॉन्वर्सेशन का पर्पस उसे रिजेक्ट करना नहीं, उसे क्लैरिटी देना होना चाहिए कि यू नो आई जेन्युइनली एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद यू, बट आई नीड यू टू अंडरस्टैंड दैट आई एम स्टिल फिगरिंग थिंग्स आउट। मैं अभी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती और ना ही मैं उस कमिटमेंट के लिए रेडी हूँ। अगर फ्यूचर में कुछ बदलेगा तो मैं तुमसे ऑनेस्टली शेयर करूंगी, लेकिन अभी के लिए मे बी प्लीज मुझे मेरी स्पेस जो है, आई वॉन्ट यू टू रिस्पेक्ट इट एंड आई विल रिस्पेक्ट योर्स एज वेल। कभी कभी हम लोग ना समझ नहीं पाते हम क्या कैसे क्या चीज कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो जैसे इसमें कोई ब्लेम नहीं है, बट एक ऑनेस्टी है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप किसी बाउंड्री को क्लियरली बोल देते हैं और उसके बाद भी सामने वाला उस बाउंड्री को रेस्पेक्ट नहीं करता,

था, तब प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की नहीं रहती है, तब प्रॉब्लम आई थिंक रिस्पेक्ट की हो जाती है। और रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो या कोई भी कनेक्शन, रिस्पेक्ट के बिना कुछ भी हेल्दी नहीं तैयार हो सकता। सो डियर लिसनर, ये बात मेरी तरफ से आप रख लीजिए कि आप किसी और की एक्सपेक्टेशंस मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन अपनी इंटेंशंस क्लियरली कम्युनिकेट करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है। बाकी सामने वाला उसे कैसे रिसीव करता है वो उसका पार्ट है। सो आई थिंक जस्ट ब्रेव अप, हिम्मत कीजिए, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन कीजिए। हो सकता है कि देखिए थोड़ा सा तो हर्ट हो, लेकिन टेम्पररी डिसअपॉइंटमेंट लाइफ लॉन्ग कंफ्यूजन से हमेशा बेटर होता है, और क्या पता यही ऑनेस्टी कल को एक और भी हेल्थी रिलेशनशिप का फाउंडेशन बन जाए। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटेगा जरूर, कुछ ना कुछ कम जरूर पड़ जाएगा। सो जो है उसको क्लैरिटी के साथ जिए, दैट्स व्हाट वी शुड एम फॉर। ये है दियत मस्ती दिल से, होप दिस हेल्प्स ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये आवाज है आपकी अंतरा की जो आपके साथ यहाँ पर जुड़ी हुई है। पता है कभी कभी थकान का रीजन काम नहीं होता है, एक ही तरह की जिंदगी होती है, राइट? रोज सुबह उठना, काम पर जाना, या जो भी आप काम कर रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेसिकली निभाना, फिर घर, और फिर यही साइकिल चलता रहता है। और बस फिर एक वो मोमेंट आता है जब आप अपने आप से पूछते हो कि बस इतना ही। अगर आपने कभी ये सवाल खुद से पूछा है तो शायद ये अगली चिट्ठी जो है आप इसके साथ रिलेट कर पाएंगे। सो यस, बढ़ते हैं अगले लेटर की ओर। इट सेज, डियर मस्ती, पेरेंट्स ने हमेशा सिखाया पढ़ो लिखो अच्छी जॉब करो, मैं वो सब करता रहा, पता ही नहीं चला कब सालों निकल गए। कल अचानक बैठा तो रियलाइज हुआ कि काम के अलावा मैंने जिंदगी में तो कुछ किया ही नहीं। दिल करता है एक महीने का ब्रेक लूं और बस ट्रैवल करूं, दुनिया देखूं, लेकिन डर लगता है कहीं काम ही हाथ से ना निकल जाए। Am I weird? Am I unique? Okay, my dear listener, सबसे पहले आप weird बिल्कुल भी नहीं हो और ना आप अकेले हो इस बात में। इसको कहते हैं wake up moment, you know? वो पल जब इंसान सिर्फ ये नहीं पूछता कि मैं क्या कर रहा हूं, बल्कि ये पूछता है कि मैं ये किस लिए कर रहा हूं। एंड बिलीव मी, ये सवाल बहुत हेल्दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जॉब से भागना चाहते हैं, इसका मतलब शायद सिर्फ इतना है कि आप अपनी आइडेंटिटी सिर्फ अपनी जॉब तक सीमित नहीं रखना चाहते, राइट? अब यू नो, जरा पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। उन्होंने जो सिखाया, पढ़ो लिखो काम करो, ऑफ कोर्स एवरी ऑल ऑफ दीस थिंग्स आर राइट, राइट? वो आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आपके फ्यूचर को स्टेबलाइज करना चाहते थे, तो वो बहुत जरूरी भी था, राइट? लेकिन एक सिक्योर लाइफ और एक फुलफिलिंग लाइफ दोनों एक ही चीज नहीं होते। हमें रोजी रोटी भी चाहिए और रूह को खुशी भी चाहिए। अब बात आती है एक महीने का ब्रेक, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि कल ही यू नो लेटर डाल दीजिए, रिजाइन कर दीजिए और बैक पैक लेकर निकल जाइए। आई थिंक वो फिल्मों में ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो डर है ना, ये भी उतना ही रियल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतनी रियल है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि अपने इस थॉट को इग्नोर नहीं कीजिए। कभी कभी हम ब्रेक इसलिए नहीं लेते क्योंकि हम थक गए हैं, हम ब्रेक इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि हम दोबारा जीना याद करना चाहते हैं। तो प्रैक्टिकल तरीके से शुरू करिए, देखिए कि आपकी अनपेड कितनी आप लीव्स ले सकते हैं या एक्यूमुलेटेड लीव यूज कितना कर सकते हैं। अगर एक महीना पॉसिबल नहीं है तो डोंट गो फॉर लाइक अ वेरी बिग नंबर, एक हफ्ता, 10 दिन, यू नो 2 वीक्स, लेट अस मेक दैट अ पॉइंट, राइट? पॉइंट ट्रैवल का ड्यूरेशन नहीं है, पॉइंट यह है कि आप अपनी लाइफ में काम के अलावा भी जगह बना रहे हैं। और एक बात ये हमेशा याद रखना कि काम आपकी जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन काम आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। ये बात मैं खुद को भी समझाती रहती हूँ, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग। जिस दिन ये बैलेंस हम लोगों ने क्रैक कर लिया ना, उस दिन शायद मंडे भी हल्का लगेगा और संडे और भी खूबसूरत लगेगा। तो माय डियर लिसनर, अपने इस एहसास से मत डरिए। कभी कभी दिल जो सवाल पूछता है ना, वही हमें जिंदगी का सबसे खूबसूरत जवाब तक लेकर जाता है। अब ये दुनिया का नारा, आपको अपना नारा बनाना है कि क्या करना है वो मैं आप पे छोड़ती हूँ। बट थैंक यू फॉर राइटिंग टू डियर मस्ती दिल से, होप दिस हेल्प्स।
1: दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लोकल कनेक्ट विद ग्लोबल एक्सपर्ट इंडियंस, एनीटाइम एनीवेयर।

0: They were not chosen.
1: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
2: Alpha.
0: The newest chapter in the YRF spy universe.
3: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई.
0: Alia Bhatt and Sharvari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
2: Alpha program उसका जुनून है, और जो भी उसके रास्ते में आता है, वो उसे मार देता है.
0: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island-wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ.
3: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ.
4: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां.
5: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग. The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

और अब मेरी बारी। वेरी गुड इवनिंग। जी हाँ, बिल्कुल सही शो पर हैं आप। बस आवाजें बदलती रहेंगी, यही तो खासियत है इस शो की, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें होती हैं। नो फिल्टर्स, नो जजमेंट, जस्ट योर लेटर्स। डियर मस्ती, दिल से। हमारे हर शो में हमेशा एक सवाल होता है और फिर उसका जवाब, लेकिन अभी इस समय नो सवाल, सिर्फ एक छोटा सा रिफ्लेक्शन। अगर सिर्फ अगर कल सुबह आप उठो और फिर पैसा इज नो इश्यू, मतलब देर इज नो EMI, देर इज नो बिल्स, देर इज नो ऑफिस, कोई फाइनेंशियल वरीज नहीं है, तो कल सुबह आप क्या करोगे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे आई ट्रैवल द वर्ल्ड, कुछ कहेंगे आई फाइनली रिटायर, और कुछ कहेंगे मैं तो सीधा मालदीव्स। लेकिन आपको सच बताऊं, मैं सोचती हूँ पहले 3 दिन तो हम सब बहुत एंजॉय करेंगे, है ना, क्योंकि चिंता ही नहीं है पैसे कमाने की, काम करने की, कुछ करने की। लेकिन फिर उसके बाद हम वही करना शुरू कर देंगे जो हम सच में करना चाहते हैं, समझे ना आप। कोई म्यूजिक सीखेगा, कोई कुकिंग करेगा, कोई बुक्स लिखेगा, कोई अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट करेगा, और कोई बिना घड़ी देखे चाय पिएगा। ओहो हो, कितना मजा है। और फिर मुझे एक और सवाल आया दिमाग में, भाई देखो डियर मस्ती दिल से है तो सवाल कहीं ना कहीं तो आएगा। अगर वो सब चीजें ही हमें असली खुशी देती हैं, तो हम उनमें से कितनी चीजें आज से ही शुरू कर सकते हैं? शायद वर्ल्ड टूर नहीं, लेकिन इवनिंग वॉक पर तो जा ही सकते हैं। मालदीव्स ना सही, पर संडे को फैमिली लंच तो कर ही सकते हैं। जॉब क्विट नहीं कर सकते, पर अपनी हॉबी तो वापस से शुरू कर सकते हैं। व्हाट डू यू से? कभी कभी ना लाइफ में हमें पैसे की नहीं, लेकिन एक परमिशन की जरूरत होती है, खुद को परमिशन देने की, थोड़ा धीरे जीने की, थोड़ा ज्यादा हंसने की, और थोड़ा काम पोस्टपोन करने की। तो आज के रिफ्लेक्शन बस इतना ही। इफ मनी वॉजेंट एन इश्यू, व्हाट वुड यू डू टुमारो? मुझे लिख के बताइए 9151896 पर। फिलहाल के लिए तो मैं ये बढ़िया सा गाना चलाती हूँ जो शायद एक और टू डू आइटम्स में होगा। अपनों का प्यार, उसके बिना क्या है जिंदगी, राइट? सुनते साथ साथ इस डियर मस्ती दिल से, एंड ऑफ कोर्स सही पहचाना आपने, इट्स रेणुका।

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र किताबों में नहीं होता, पर हाँ ख्यालों में जरूर होता है। बिल्कुल इन्हीं बातों के साथ साथ मैं आरजे निपुर्ति और मस्ती दिल से शो पर आपसे बातचीत कर रही है। वैसे आपके ख्यालों में भी जो ख्याल आए ना, वो आप हमें लिखकर भेज दिया करिए। डियर मस्ती दिल से शो पर हम आपके लेटर्स पढ़ते हैं, आपके ख्यालों में छिपे सवालों के जवाब ढूंढते हैं एंड डेफिनेटली आपसे बहुत सारी बातें करते हैं। सो अभी जो मेरे हाथों में लेटर आ चुका है उसमें लिखा हुआ है, हाय डियर मस्ती, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा चार्मिंग एंड आउटस्पोकन इंसान हूँ और बस एक कमी है मुझ में, मैं किसी से भी अगर पहली बार मिलता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि पहली मीटिंग में बात क्या करी जाती है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट मीटिंग में मैंने शायद इतना कुछ गलत पूछ लिया कि आज भी मैं अकेला ही हूँ। सो कुछ एडवाइस दो, फर्स्ट मीटिंग में क्या बिहेवियर रहे, कैसे रहे। ओके, सबसे पहली चीज मैं आपको पूछूंगी कि फर्स्ट मीटिंग में आपको कुछ बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं दिखना है, आप जैसे हो वैसे दिखना है, ठीक है। एंड अगर आप मुझसे सवालों की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट मीटिंग में आप किसी से भी उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स के बारे में मत पूछिए, आप उस शख्स के बारे में पूछिए कि वो सिंगापुर में कब से रहता है या रहती है, उसकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेज कहाँ से हुआ, करियर के क्या प्लान्स हैं, लाइफ के क्या गोल्स हैं। आपको लाइफ डिस्कस करनी है, ना कि उसकी पर्सनल लाइफ डिस्कस करनी है, बिकॉज समटाइम्स हम बहुत ही ऑफेंड फील करते हैं कि कोई हमसे अभी अभी मिला और हमसे कितने पर्सनल सवाल पूछ रहा है। हाँ, सो मे बी आप कुछ ऐसे सवाल पूछ लेते होंगे जिससे सामने वाला अनकंफर्टेबल फील करता होगा, तो वो सवाल भी पूछे जाएंगे लेकिन एक सही वक्त पर, है ना, जब आप भरोसा जीत लेंगे।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

अच्छा, मूवीज देखकर आपने बहुत सारी बातें सीख ली हैं, तो क्यों ना एक सही तरीके से उससे गाइडलाइंस ली जाए कि आप किसी को इम्प्रेस कैसे कर सकते हैं। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, एंड यहाँ पर बड़े सारे ऐसे सवाल आते हैं जिनको देखकर लगता है कि अरे ये भी कोई दिक्कत है, अरे ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है यार। सो अभी मेरे हाथों में जिनका लेटर है, उन्होंने लिखा है कि मैं जैसे ही किसी से बात करना शुरू करती हूँ तो मुझे एंजाइटी फील होने लगती है। मैं जितनी जल्दी कोशिश करती हूँ उस जगह से उठ जाने की, उतनी जल्दी वहां से निकल जाती हूँ। वो ऑफिस की मीटिंग्स हो गई, घर वालों के डिस्कशंस हो गए, कजिन्स का घर पर आना हो गया, या फिर किसी से भी डेट पर मिलने जाना हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो मुझे हार्डली 10 मिनट्स उसको देने और मैं यहाँ से जाऊँ। जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसा क्यों है, आप अपने आप को इतना रिजर्व क्यों रख रहे हो। हाँ देखो, कई बार होता है कि हमें अकेले रहना, अकेले उठना, अकेले खुद से शीशे में बैठ के बातें करना अच्छा लगता है, फिर उससे होता क्या है, हम बहुत ही ना अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम ही हम हैं और कोई कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, सबसे पहले ये जो आपने एक वॉल क्रिएट कर रखी है ट्रांसपेरेंसी अपने आसपास, उसको तोड़िए और सबसे पहले अपने घर वालों के संग बैठिए, डिस्कशंस कीजिए, और जिस मोमेंट आपको एंजाइटी फील होना, उस मोमेंट से आप 15-20 मिनट ऊपर बैठिए, अपने आप को चैलेंज दीजिए, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू फील गुड।

0: बिल्कुल ऐसे ही गुड फीलिंग देने वाले गाने डियर मस्ती दिल से शो पर मेरे यानी आरजे नूपुर के साथ.
1: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: They were not chosen. They were created.
1: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
0: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
2: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई.
0: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडिया फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट.
3: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है.
0: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ.
4: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ.
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: And it's time for मेरा अगला लेटर. जी हाँ, यहाँ पर मुझे लिखा गया है एक 42 ईयर ओल्ड ने, और उन्होंने कहा है कि भाई ऑन पेपर आई थिंक आई एम सक्सेसफुल, लेकिन आगे क्या परेशानी है, लेट मी टेल यू. डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है. तो चलिए इनकी बाकी की चिट्ठी देखते हैं. हाय रिनुका, आई टर्न 42 दिस ईयर. ऑन पेपर आई थिंक आई एम सक्सेसफुल. हैव अ गुड जॉब, अ डिसेंट इनकम, अ हाउस, अ कार, एंड पीपल ऑफन टेल मी यू हैव डन

वेरी वेल। लेकिन हाल ही में मैंने अपने आप से पूछना शुरू किया है, व्हाट इज सक्सेस? बिकॉज इफ दिस इज सक्सेस देन व्हाई डू आई स्टिल फील रेस्टलेस? I hardly spend time with my parents. I don't remember the last time I sat with my family without checking my phone. I keep chasing the next promotion, the next target, the next achievement. और हर बार जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, तब happiness lasts only a few days. Then another race begins. Sometimes I look at people earning much less than me and laughing more than me. Sometimes I see retired people walking in the park, smiling without any hurry. And I wonder, have I confused success with being busy? क्या सक्सेस पैसा है, क्या सक्सेस पीस है, या क्या सक्सेस फैमिली है? और इज इट सिंपली वेकिंग अप एवरी मॉर्निंग लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइफ? आई ऑनेस्टली डोंट नो एनी मोर। तुमको क्या लगता है? वेल, पहली बात तो आपने ये नहीं बताया कि आपका जेंडर क्या है। तो मुझे ये नहीं पता कि इस समय मैं किसी आदमी से बात कर रही हूँ या औरत से बात कर रही हूँ, बट इररेलेवेंट। जी हाँ, टोटली सक्सेस का मीनिंग तो सेम होना चाहिए ना। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, थोड़ा जिंदा होते हैं और उसके बाद फिर आपके सवाल का जवाब भी शायद दे पाएंगे। Let's get जिंदा, भाग मिल्खा भाग के साउंड ट्रैक से ये वाला गाना, and I'll be back very soon. Stay tuned.

वेलकम बैक। जी हाँ, कुछ देर पहले ब्रेक से पहले एक सवाल आया था यहाँ पर कि सक्सेस क्या है, इज इट पीस, इज इट मनी, इज इट फैमिली, आखिर क्या है। तो चलिए उस बात का जवाब देने की कोशिश करते हैं, थोड़ा डायरेक्शन ढूंढते हैं। इस सवाल का जवाब तो मुझे भी बहुत दिनों से तलाश है। डियर मस्ती दिल से, डियर मस्ती दिल से, पर इस सवाल का जवाब, वेल सबसे पहले तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई भी इंसान लिसनिंग टुडे जिसने ये सवाल कभी ना कभी अपने आप से नहीं पूछा होगा। व्हाट इज सक्सेस? जब हम छोटे होते हैं तो सक्सेस लगता है जैसे कि मार्क्स अच्छे आ जाएं, देन अच्छे कॉलेज में घुसना, देन अ जॉब, देन अ प्रमोशन, देन अ बिगर हाउस, अ बेटर कार, सेविंग्स थोड़ी ज्यादा। बट कहीं ना कहीं अलोंग द वे लाइफ क्वाइटली आस्क्स अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, आर यू हैप्पी? क्योंकि सक्सेस जो होता है ना, एक डेस्टिनेशन नहीं है। मे बी इट चेंजेस विद एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। जब हम 20 साल के होते हैं, सक्सेस इज एन अपॉर्चुनिटी। एट 40 सक्सेस मे बिकम बैलेंस। एट 60 सक्सेस मे सिंपली बी गुड हेल्थ, पीसफुल स्लीप एंड पीपल हु जेन्युइनली लव यू। मनी इज इम्पॉर्टेंट, अचीवमेंट भी बहुत जरूरी है, एम्बिशन भी जरूरी है, बट अगर सब कुछ है और पीस नहीं है, देन परहैप्स यू आर सक्सेसफुल इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन नॉट येट इन द आईज ऑफ योर ओन हार्ट। कभी कभी रियल सक्सेस इज प्रोबेबली दिस, टू हैव समवन वेटिंग फॉर यू व्हेन यू गो होम, टू हैव टाइम फॉर द पीपल हु मैटर, अच्छे से नींद पूरी होना पीसफुली, टू वेक अप विद पर्पस, टू बी रिस्पेक्टेड, not because of your position but because of the person you are। और एक thought जो मेरे दिमाग में हमेशा आता है, मुझे लगता है आपके साथ भी शेयर करती हूँ, एक दिन ऐसा आएगा जब आपको कोई याद नहीं करेगा for how many meetings you attended or how many emails you sent, they will remember how you made them feel। Maybe वही है success, think about it। Radio Masti 24/7 पर छोटा सा ब्रेक, सक्सेसफुल ब्रेक लेकर आएंगे, अच्छा गाना चलाएंगे। गुड इवनिंग।

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।

कई बार ऐसा होता है कि दुनिया को सवाल पूछने के बजाय हम खुद से सवाल पूछ बैठते हैं। आपने कभी ये गलती करी है? हाँ, डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर, एंड दूसरों पर उंगली उठाना आसान होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा आसान होता है खुद पर उंगली उठाना। और आपको तो पता ही है, हम सबसे ज्यादा आसान काम पहले करते हैं। हाँ, सो अभी मेरे हाथों में जो लेटर है उसमें किसी ने मुझे लिखकर भेजा है कि हाय डियर मस्ती, मुझे ना अपना नाम नहीं पसंद है, मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लगता है जब कोई मुझे मेरे ही नाम से बुलाता है। मतलब आई फील वेरी पिटी जब कोई मेरे नाम का और ज़्यादा मजाक उड़ाता है, क्योंकि मेरा नाम ही ऐसा है जो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, मेरे नाम की वजह से मेरा हर जगह मजाक बन जाता है। मैं क्या करूँ बताओ, अब नाम ऐसी चीज़ है कि मैं बदल भी नहीं सकता। डेफिनेटली जिन्होंने मुझे लेटर भेजा है, मुझे आपका नाम जानना भी नहीं है, बिकॉज ये शो जो है वो बहुत ज़्यादा प्राइवेसी मेंटेन करता है, राइट? एनीवेज, जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, आपने ये कहावत तो सुनी है ना कि नाम में क्या रखा है, आपके काम में रखा है यार। हा? आप काम ऐसे कीजिए कि आपका नाम इतना बड़ा बन जाए कि आपके नाम के पीछे का जो फंक्शनिंग है उस पे ध्यान ही ना जाए किसी का। हाँ, देखो, सबसे पहली चीज, अगर दुनिया आपके नाम का मजाक उड़ा रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो उससे भी बड़ी गलती आप खुद कर रहे हैं। आप अपने नाम को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, व्हाटएवर योर एज, एंड डेफिनेटली आप मुझे लेटर भेज रहे हैं तो आप एक पर्टिकुलर अच्छी एज तक पहुंच गए होंगे, और आपने बचपन से लेके, मतलब आपकी स्कूल कॉलेज लाइफ और अभी जो भी लाइफ आपकी चल रही है, आपने सबसे पहले खुद का नाम एक्सेप्ट नहीं किया है। आप उसको एक बहुत ही छोटी नजरों से देखते हैं, जिसकी वजह से दुनिया आपके नाम का मजाक बना पा रही है। ये बहुत छोटी चीज है यार, आप अपने हार्डवर्क पे ध्यान दो, अपने बिजनेस प्लान्स और गोल्स पे ध्यान दो, नाम बन जाएगा। वो सिर्फ चार शब्दों का एक

इट्स मी माई सेल्फ और डेफिनेटली माइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये जो दुनिया आई के अराउंड घूमती है ना, ये बहुत ही गलत है यार, बहुत ही गलत है. डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुराव के साथ, एंड बहुत सारे प्यारे प्यारे लेटर्स मेरे पास पहुंच रहे हैं. और अगला लेटर पता है क्या है, उसमें किसी ने मुझसे पूछा है कि हाय डियर मस्ती, मैं एक रिलेशनशिप में हूँ और एक हेल्दी रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन मुझे जानना है कि एक रिलेशनशिप में पार्टनर और मेरा वक्त तो है ही है, लेकिन मुझे अपना क्वालिटी टाइम अलग से कितना निकालना चाहिए, सिर्फ मी टाइम कितना होना चाहिए, एक उसका क्या कैलकुलेशन होता है, बिकॉज समटाइम्स आई मिस माई सेल्फ. जिन्होंने मुझे एक लेटर भेजा है, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या आप सच में एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं? देखो, हेल्दी रिलेशनशिप में सारी चीजें ना बहुत ही, मैं बता रही हूँ, एफर्टलेस होती है. मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको अकेले वक्त बिताने से ज्यादा अच्छा ना अपने पार्टनर के साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगेगा. और मी टाइम जैसा जो क्वेश्चन मार्क है ना, वो आपके जहन में भी नहीं आएगा. और अगर आपका पार्टनर बहुत अंडरस्टैंडिंग हुआ तो वो सामने से ही कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर लेगा कि आप दोनों अपने अपना मी टाइम भी एंजॉय कर रहे हैं, अपनी अपनी एक सिंगल लाइफ भी एंजॉय कर रहे हैं, और एट द मोमेंट अपनी ड्यूअल लाइफ भी एंजॉय कर रहे हैं. तो इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है कि आपके पास एक रिलेशनशिप में रहते हुए अकेले का कितना वक्त होना चाहिए. बट हाँ, अगर आप एक सच में हेल्दी रिलेशनशिप में हैं, आपको ये वक्त खुद ब खुद मिल जाएगा.

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
1: कृषि वर्ल्ड नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।

वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. मैं हूं अंतरा आपके साथ. और पता है कभी कभी हमें ये सच्ची में नहीं समझ में आता कि हाउ मच इज इनफ. कब प्रोटेक्ट करना है, कब ट्रस्ट करना है, कब बोलना है, कब सिर्फ सुनना है. थोड़ी देर पहले नुपुर के पास जो लेटर आया था उसने मुझे भी आई वॉज काइंड ऑफ थिंकिंग कि अगर मैं सिचुएशन में होती तो हाउ वुड आई हैव काइंड ऑफ डेल्ट विद इट. बट वेल, चलते हैं हमारे अगले लेटर की ओर. डियर मस्ती, लोग अपने टीनेजर्स से प्रोटेक्शन यूज करने और इस टॉपिक पर कैसे बात करते हैं. मेरे वाले तो बात शुरू होते ही भाग जाते हैं. बट आई जेन्युइनली फील कि एज पेरेंट्स दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एनी आइडिया? नहीं? ओके. हमारे टाइम में तो कोई टीवी पे कुछ भी ऐसा आता था ना, रोमांटिक सीन भी आता था तो हमारे चैनल बदल दिए जाते थे या फिर हमें रूम से बाहर कुछ पानी लेके आओ मेरे लिए ऐसे करके भेज दिया जाता था. बट माय डियर लिसनर, ऑफ कोर्स टाइम्स हैव चेंज्ड. जस्ट मेरे को अचानक से वो याद आ गया. वेल, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि यस, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. But I am very sure that you would have tried your best. शायद आपने उनको साइड में एक दिन मतलब काफी जो है करेज इकट्ठा करके कहा होगा आओ तुमसे कुछ बात करनी है, जरूरी बात करनी है. एंड आपने उनको बिठा कर ठीक है ऐसे कुछ सिचुएशन क्रिएट की होगी. लेकिन एक बात ऑनेस्टली बताइए, जितना ऑकवर्ड वो मोमेंट आपके लिए है उतना ही ऑकवर्ड आपके टीनेजर के लिए भी है. एंड इस एज में ऑकवर्ड सिचुएशन से बचने का सबसे इजी तरीका क्या होता है? बस उठो और भाग जाओ. देखिए, एक लाइन जो आपने कई बार सुनी भी होगी, चिल्ड्रन सी चिल्ड्रन डू. एंड टीनेजर्स वो तो जिंदगी के उस फेज में होते हैं जहां पे सब कुछ बदल रहा होता है उनके लिए, राइट? उनकी बॉडी, उनके हॉर्मोन्स, उनके इमोशंस, उनकी आइडेंटिटी, उनके क्वेश्चंस, उनकी क्यूरियोसिटी पीक पे होती है. सब कुछ एक साथ इवॉल्व हो रहा होता है. एंड बिलीव मी, चाहे हम पेरेंट्स बन गए हो, हम सब कभी ना कभी इस फेज से गुजरे हैं, राइट? बस शायद भूल गए हैं कि अच्छा ठीक है तो फिर क्या करें. मुझे लगता है इसको एक स्पेशल मीटिंग मत बनाइए, नॉर्मल थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर सकते हैं. मान लीजिए आप फैमिली के साथ कार में बैठ के कहीं जा रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसे ही जनरली बात हो रही है, हा ही हो रहा है, कोई ऐसा टॉपिक निकल आया, या टीवी देखते वक्त कोई किसिंग सीन आ गया, या किसी मूवी में रिलेशनशिप की बात हो रही हो, उस मूवमेंट को ऑकवर्ड बनाकर चैनल मत चेंज करिए, ना ही सबकी नजर अपने टीनेजर पर टिका दीजिए, स्पॉटलाइट पर डाल दिया उसको. बट कैजुअली कॉन्वर्सेशंस शुरू कर सकते हैं. हो सकता है आप अपने स्पाउस से ही जनरली बात कर रहे हैं बच्चों के सामने, ठीक है. मुझे लगता है आजकल स्कूल में कंसेंट एंड प्रोटेक्शन, आई एम श्योर इन बच्चों को तो हमसे ज्यादा ही पता होगा, समथिंग लाइक दैट. मुझे लगता है हेल्दी रिलेशनशिप्स के बारे में घर पे इस तरह से बातें करना जो है काफी इंपॉर्टेंट है. ट्रस्ट मी, टीनेजर्स दिखाएंगे कि उनका ध्यान फोन में है लेकिन वो सुन सब रहे होते हैं, हर वर्ड, हर रिएक्शन. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, उन्हें ये फील होता है कि ये टॉपिक तो घर में टैबू के जैसा नहीं है. और जिस दिन उनके मन में कोई जेन्युइन सवाल आएगा उस दिन उनके लिए आपके पास आना थोड़ा सा आसान हो जाएगा. क्योंकि पेरेंटिंग सिर्फ आंसर्स देने का नाम नहीं है, पेरेंटिंग वो एनवायरनमेंट भी बनाने का नाम है जहां पे बच्चा बिना डरे सवाल पूछ सके. और शायद वही सबसे बड़ी आई थिंक विन विन सिचुएशन होती है. आई होप दिस हेल्प्स. आप उनको जरूर इस तरह से जो है कैजुअल कॉन्वर्सेशंस के बीच में जो है समझाने की कोशिश करें. आई एम श्योर दे विल ओपन अप टू यू फॉर श्योर. बट ये भी तैयार रहिए कि व्हेन दे ओपन अप यू विल बस हमारी तरह विदाउट जजमेंट उनको पूरे दिल से सुने, प्रॉपरली सुने, है ना. स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.

टाइम फॉर मी एंड माय नेक्स्ट लेटर. जी हाँ, ये है डियर मस्ती दिल से और आप सुन रहे हैं आप ही की चिट्ठियाँ, अनोनिमस एब्सोल्युटली एंड शायद बहुत से लोगों के दिलों को छूती हुई. नो फिल्टर्स, नो जजमेंट, जस्ट योर लेटर्स. डियर मस्ती दिल से एंड रेडियो मस्ती 24/7. ये वाली चिट्ठी कुछ ऐसे कहती है कि डियर रेणुका, आई नेवर थॉट कि मुझे एक मोबाइल फोन के बारे में तुम्हारे को लिखना होगा. बट आई थिंक इट्स स्लोली टेकिंग ओवर माई लाइफ. द फर्स्ट थिंग आई डू एवरी मॉर्निंग इज चेक माई फोन. द लास्ट थिंग आई डू बिफोर स्लीपिंग इज स्क्रोल. समटाइम्स आई पिक इट अप

आई गेट माई लाइफ बैक? ओह माई गॉड, मुझे कुछ टाइम के लिए तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बारे में बात कर रहा है. नॉट जोकिंग, नॉट किडिंग, रियली. बट ये जो फ़ोन है ना, शुरू शुरू में जब ये लॉन्च हुए थे स्मार्टफोन्स, मैंने बहुत टाइम तक इसको ना लेने की कोशिश करी थी. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली, बिकॉज मुझे पता था कि एक तो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट मेरा, और दूसरी चीज़ ये जो बीमारी शुरू हो रही है ये मुझे बहुत दूर तक हड़प लेगी. और मुझे ही नहीं, मैंने देखा कि मेरे आसपास बहुत सारे लोग धीरे धीरे इसके अंदर घुसते चले गए. यस, आई एम एक्टिवली ट्राइंग टू कीप अवे फ्रॉम इट, लेकिन फिर भी काम है या कई बार रिलैक्सेशन है, दोनों ही रीजंस के लिए हाथ इसी डिवाइस की तरफ जाता है. लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर और वापस आके बात करते हैं कि भाई आप और हम सारे इस एडिक्शन से कैसे कंट्रोल करें. गुड इवनिंग.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। राइट, डिजिटल एडिक्शन, फोन के साथ में हमारा कुछ ज्यादा ही लगाव। जी हाँ, उसके बारे में बात कर रहे थे हम जस्ट बिफोर दिस ब्रेक, जब ये लेटर मैंने आपके लिए पढ़ा था। बट वेल, इट्स टाइम फॉर अस टू टेक अ लुक एट सॉल्यूशन क्या है। डियर मस्ती दिल से, ये जो डिजिटल एडिक्शन है ना, ये वार्निंग के साथ नहीं आता है, इट जस्ट क्वाइटली बिकम्स अ हैबिट। हमारा फोन्स जो हमारा टाइम सेव करने का डिवाइस था, लेकिन आज के दिन में उसने हमारा सारा टाइम ले लिया है। वी आर स्क्रोलिंग थ्रू अदर पीपल्स लाइव्स एंड हम अपनी जिंदगी के मोमेंट्स तो मिस कर रहे हैं। आपने नोट किया है, वी पैनिक मोर व्हेन वी फॉरगेट आवर फोन देन व्हेन वी फॉरगेट टू आस्क हमारे पेरेंट्स हाउ दे आर डूइंग। वी नो व्हाट्स ट्रेंडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, बट समटाइम्स वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन द रूम वी आर सिटिंग इन। टेक्नोलॉजी दुश्मन नहीं है, इट्स एन अमेजिंग टूल, बट द प्रॉब्लम स्टार्ट्स जब ये टूल हमारा मास्टर बन जाता है। सो डोंट ट्राई चेंजिंग द होल लाइफ टुमारो, स्टार्ट विद अ स्मॉल। एक छोटी सी प्रॉमिस करें, आप भी कीजिए और मैं भी करती हूँ। कोई फोन नहीं ड्यूरिंग मील्स, मे बी द फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर वेकिंग अप या लास्ट 30 मिनट्स सोने से पहले। जी हाँ, उस समय हाथ मत लगाइए। टेक अ वॉक विदाउट योर फोन, हैव वन कॉन्वर्सेशन एवरी डे वेयर योर स्क्रीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। क्योंकि जो जिंदगी है ना, इट्स नॉट हैपनिंग इनसाइड योर फोन, इट्स हैपनिंग अराउंड यू व्हाइल यू आर लुकिंग डाउन। एंड फिर एक दिन क्या होगा ना, ये जो मेमोरीज है ना जो आप ट्रेजर करेंगे, वोंट बी द पोस्ट्स जो आपने लाइक करे थे, दे विल बी द मोमेंट्स यू एक्चुअली लिव्ड। बट मे बी इट्स टाइम ये सब छोड़ के ना जरा ऊपर देखो, आसपास देखो और अपने दिल को धड़कने दो, धड़कने दो। हमारे साथ वॉक पे जाओ, सिर्फ हमारी बातें सुनो, लेकिन देखो आसपास, फोन की तरफ मत देखो। एंड यू विल रियलाइज हर मोमेंट आप कितने मजे से उसके साथ एक मेमोरी बनाते हुए जी रहे हैं। ट्रस्ट मी, ये मैं ज्ञान नहीं बांट रही हूँ, कभी कभी एक छोटा सा प्रॉमिस अपने आप को, इट रियली गिव्स अस सो मच प्लेजर। स्टे ट्यून्ड, रेडियो मस्ती 24/7, डियर मस्ती दिल से। नहीं, आई एम नॉट जजिंग यू, आप भी मुझे जज मत करो।

0: They were not chosen. They were created.
1: उसकी माँ का नाम जानकी था. हम इसे सीता बुलाएंगे.
2: Alpha.
0: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
3: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई.
0: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडियाज फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट.
4: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है.
0: बॉर्न टू फाइट बिल्ट टू सर्वाइव. अल्फा रिलीजिंग 3rd जुलाई आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू. ब्रॉट टू यू बाय होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट.
5: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
6: और आज की शाम फिर एक बार हमें ये एहसास करा गई कि लाइफ में सबसे मुश्किल चीज प्रॉब्लम्स नहीं होती, कभी कभी सवाल होते हैं. Dear Musti, दिल से. Because sometimes रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है. और वो अनजाना इंसान आपको वाकई बता रहा है कि हमारे जो सवाल होते हैं ना, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं तैयार हूँ, क्या मुझे और रुकना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए. और शायद इसीलिए जिंदगी इतनी खूबसूरत भी है, बिकॉज एवरी स्टेज brings a new question and every experience brings a new answer. आज हमने बहुत सारी कहानियां सुनी, लेकिन हर कहानी ने एक बात जरूर सिखाई. लाइफ इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट लर्निंग, ग्रोइंग, मेकिंग मिस्टेक्स, सेइंग सॉरी, ट्राइंग अगेन एंड बिकमिंग अ स्लाइटली बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स एवरी सिंगल डे. उसी के साथ मैं तो यही कहूंगी कि थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस विद योर हार्ट्स. हर लेटर जो आता है हमारे पास वो सिर्फ एक ईमेल नहीं होता, वो किसी की हिम्मत होती है. और जब आप अपनी कहानी लिखते हो ना, शायद किसी और को अपनी कहानी जीने की हिम्मत मिल जाती है. तो लिखते रहिए, क्वेश्चंस भेजते रहिए, कभी आंसर्स के लिए, कभी सिर्फ इसीलिए क्योंकि दिल हल्का हो जाता है. मैं रेणुका और ये डियर मस्ती दिल से. याद रखिए, जिंदगी में हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, उसी समय नहीं मिलता, लेकिन हर सवाल हमें अपने बारे में कुछ नया जरूर सिखा देता है. अपना ख्याल रखिए, दिल का भी ख्याल रखिए और उन लोगों का भी जो आपके दिल में रहते हैं. हैव अ फैंटास्टिक रेस्ट ऑफ द इवनिंग एंड हम आपको मिलेंगे, जी हाँ, इसी शो पर अगले हफ्ते ट्यूसडे 5 से 8, और अगर आप ऑन कोर सुन रहे हैं तो थर्सडे शाम. चलते हैं, तब तक चलते हैं साथ साथ इस हसीन दुनिया को जीते हुए. दिस इज रेणुका साइनिंग ऑफ.
5: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। जोश में रहो।
1: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
2: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
3: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।

0: कभी कभी आया कि जैसे तुझको बनाया गया मेरे लिए।
1: ये झूठ बोलते हैं मेरे ख्याल कि जैसे

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: Ben.
1: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
2: हेलो, हाय, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत स्वागत स्वागत, आपका ढेर सारा स्वागत कर रहा हूँ मैं समर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। कैसे हैं सिंगापुर? और अगर मैं अपने स्टाइल में पूछूं तो केम जय सिंगापुर, सारू छे अग्गा सिंगापुर मारू छे। और आज के इस शो में जिसका नाम है लेजेंड्स द अचीवर सीरीज में, मैं आपको किससे मुखातिब करवाने वाला हूं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, यही बताने तो आया हूं मैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ले चलूंगा एक पुराने हिंदुस्तान में, 1850 के आसपास के हिंदुस्तान में। ये तब का हिंदुस्तान है जब सिपाही म्यूटनी यानी गदर 1857 की क्रांति होने ही वाली थी। पूरे इंडिया में बहुत सारी दिक्कतें थी, करप्शन था, रीजनलिज्म था, कास्टिज्म बहुत ज्यादा सर उठाए हुए था और कुप्रथाएं बहुत जोरों पर थी। ऊपर से ब्रिटिश हुकूमत, ऐसे में न व्यापार ठीक था न ही आम जिंदगी। देश को आजादी चाहिए थी। इन सबको भारत के सबसे पहले हिंदी नाटक को लिखने वाले लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बड़ा खूबसूरती से अपनी नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा में दर्शाया। और कुछ ऐसा ही हाल था, न राजा था जिसकी चलती हो, न कोई सुल्तान, और जो बचे थे उनके राज में जाने क्या हो रहा था। अंधेर नगरी थी और चौपट था राजा। भारतेंदु के नाटक अंधेर नगरी में एक बड़ा खूबसूरत अंश है, वो मैं आपको सुनाता हूँ, आप समझ सकेंगे कि उस वक्त का हिंदुस्तान कैसा था। नाटक में सब कुछ टके शेर मिलता था, चाहे कुछ भी खरीदिए। टके शेर मतलब एक टका दीजिए और एक शेर कुछ भी ले लीजिए, मतलब नमक भी उसी भाव और बादाम भी उसी भाव। ये सुनिए क्या लिखा उसमें कि चूरन अमल बैद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचलोना, चूरन बना मसालेदार, हिंदू चूरन इसका नाम, चूरन जब से हिंद में आया, चूरन नाटक वाले खाते, चूरन सभी महाजन खाते, चूरन खाते लाला लोग, चूरन खावे एडिटर जात, चूरन साहिब लोग जो खाता, चूरन पुलिस वाले खाते, ले चूरन का ढेर, बेचा टके सेर। उस जमाने में साहब कबाब टके सेर, मछली टके सेर, बादाम पिस्ते अखरोट टके सेर, आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल सब कुछ टके सेर मिलता था। मगर 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की सिपाही म्यूटनी के बाद, भारत के लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, एक दिशा मिली। न सिर्फ आजादी की लड़ाई को लड़ने का जज्बा आया, बल्कि व्यापार करने का, कमाने का, जीने का भी बहुत हौसला आया। बहुत सारे व्यापारी बॉम्बे कोलकाता की ओर रुख करने लगे। राजाओं और मुगल बादशाहों का राज खत्म होने लगा। आज हम एक ऐसी संघर्ष की बात करेंगे जो न सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत से थी बल्कि व्यापार में खुद।

0: 3, 2, 1.
1: और रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है।
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for application form.
4: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
5: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
6: हाँ जी, वेलकम बैक। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन गानों से आपने बहुत सारी एनर्जी गेन कर ली होगी और अब आप आ गए होंगे इस स्ट्रगल के सफर पर चलने के लिए। मैं हूँ समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स द अचीवर्स सीरीज। और आज हम जिनके बारे में बात करें, उन शख्स से आपको मिलवा दूं, वो हैं जिन्हें कॉटन किंग ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। लेकिन उनकी शख्सियत बेहद ही सादा रही, उतनी ही सादा जितनी कपास होती है। कॉटन, चाहे जितना भी रेशम हो आसपास, कपास सबसे अच्छा लगता है। एक बहुत बड़े व्यापारी होने के बाद भी, बहुत रिच होने के बाद भी, उन्हें शफाफ कुर्ता, धोती और मारवाड़ी पगड़ी में ही हमेशा देखा गया। यहां तक कि विदेशों में भी वो बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ ऐसे ही रहे इसी लिबास में। एक बार फिर से मिलवा रहा हूं एक और मारवाड़ी बिजनेसमैन से, जिनका नाम है गोविंदराम सेकसरिया। कहा जाता है कि अंग्रेजों के जमाने के सबसे बड़े व्यवसायी थे गोविंदराम सेकसरिया। मैंने पहले भी भारत की आजादी से पहले व्यवसाय के बारे में आपको बताया भी था कि उस समय ज्यादातर अफीम और कॉटन के व्यवसाय में लोग लगे हुए थे। पारसी लोग इस व्यापार में पूरी तरह हाथ आजमा रहे थे और जम भी रहे थे। जमशेदजी टाटा से पहले कावस जी नाना भाई डावर ने सूती धागा बनाने के लिए सबसे पहले मशीनरी खरीदी और धागे कपड़े का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। कुछ मारवाड़ी यानी राजस्थानी भी इसमें अपना भाग्य परखने को निकल पड़े थे। मसलन जमनालाल बजाज जी के फादर बजराज जी, वो भी कॉटन के व्यवसायी थे। लेकिन इन सब में जो सबसे ऊपर पहुंचे वो थे गोविंद राम सेकसरिया। तो चलिए एक ब्रेक।

ना छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना है कट यमला पगला दीवाना।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर।
3: आपकी नॉलेज आपकी जीत।
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: एक बार फिर से आप सबका इस्तकबाल रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। आज हम और आप बात कर रहे हैं लेजेंड्स की इस सीरीज में, अचीवर्स सीरीज में, कॉटन किंग ऑफ द वर्ल्ड गोविंद राम सिकसरिया साहब की। गोविंद राम जी का जन्म हुआ राजस्थान के नवलगढ़ में। ये साल था 1888। 15 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। पहले बहुत जल्दी शादी कर दी जाती थी, तो 15 साल की जब उम्र में उनकी शादी कर दी गई तो वो अपना घर यानी नवलगढ़ छोड़कर अपने पिताजी के साथ बॉम्बे चले आए। उनके फादर कॉटन के व्यवसायी थे, वो वहीं उनके बिजनेस में उनका साथ देने लगे। लेकिन लेकिन लेकिन ये राह इतनी आसान कहां थी। इस बहुत जवान बच्चे के पिताजी बहुत जल्द गुजर गए और उसे मझधार में अकेला छोड़ गए। जिंदगी पर मुसीबतों ने हमला कर दिया। घर में मां, पत्नी और 6 छोटे भाई बहन थे। कुछ दिन बाद मां भी गुजर गई। न तो माता पिता का साया रहा सिर पर और न ही ब्रिटिश सरकार का साथ मिलने की उम्मीद थी, पर समय ने उनका साथ दिया। उस 17-18 साल के लड़के ने बिना हिम्मत खोए काम करना शुरू किया। बिजनेस के लिए माहौल इतना खराब था कि उन्होंने अपना करियर बॉम्बे कॉटन एक्सचेंज में ऑपरेटर के तौर पर शुरू किया। लोगों से अपनी जान पहचान बढ़ाई और 1905 में अपनी फर्म बना ली। कॉटन कॉन्ट्रैक्ट बोर्ड में, जो ब्रिटिश सरकार ने बना रखी थी, मेंबरशिप हासिल कर ली। ईस्ट इंडिया कॉटन एसोसिएशन के भी वो मेंबर बन गए, जिसमें कॉटन के बायर्स, सेलर्स और ब्रोकर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स वगैरह शामिल थे। वेल, उनकी फर्म का नाम था मेसर्स गोविंद राम सिकसरिया। मैंने आपको कहा था ना, समय का खेल बड़ा ही निराला है। उनकी फर्म पांव जमा ही रही थी कि तभी हुआ रशिया और जापान के बीच वॉर। इस वॉर में उन्होंने देखा कि कैसे अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट हो जाए तो गवर्नमेंट का सब मैनेजमेंट बिगड़ जाता है और इसका फायदा उठाया जा सकता है। और इसी बीच शुरू हो गया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इस मौके को उन्होंने खूब भुनाया और खूब कमाया, जमकर ट्रेडिंग की कॉटन की। और जिन दो संस्थाओं के नाम अभी मैंने लिए, उनके वो ओरिजिनल मेंबर बन गए और बस सफलता के पथ पर निकल पड़े।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
3: They were not chosen. They were created.
4: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
5: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
6: पर इस बार सीता आज लंका खुद चलाने आई।
5: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडिया'स फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल, वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट।
7: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है।
5: बॉर्न टू फाइट, बिल्ट टू सर्वाइव। अल्फा रिलीजिंग 3rd जुलाई आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट।

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: गोविंद राम सिकसरिया की कहानी आज सुन रहे हैं आप लेजेंड्स में समर की जुबानी। वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। अचीवर्स सीरीज में आज हम गोविंद राम सिकसरिया साहब की बात कर रहे हैं। नाम कुछ अनजाना सा लगा होगा आपको, लेकिन उनका नाम आज भी किसी ट्रेडर्स कम्युनिटी के बीच बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। हाँ जी, तो हम थे वर्ल्ड वॉर पर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पर, जिसके कदम हार कर थक गए थे, लेकिन वहां से कॉटन की ट्रेडिंग का एक बड़ा बाजीगर मिला देश को, और वो थे हमारे आज के लेजेंड। वर्ल्ड वॉर के बाद बाजार पर बड़ा खराब असर हुआ। साल 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद सोने की रेट पूरे वर्ल्ड मार्केट में गिर गई, स्टॉक मार्केट तबाह हो गया। यकीनन सिकसरिया को भी नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बहुत शांत, पूरी डिग्निटी के साथ डटे रहे। उन्होंने कॉटन मार्केट को छोड़ा और सोने चांदी में ट्रेडिंग करने लगे। यही नहीं, और भी दूसरे कमोडिटी मार्केट्स भी आजमाए उन्होंने, और जैसा कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। जल्द ही इसमें उन्हें सफलता भी मिल गई। द बॉम्बे बुलियन एक्सचेंज के वो मेंबर बन गए, साथ ही मारवाड़ी चेंबर ऑफ कॉमर्स, द बॉम्बे सीड ब्रोकर्स एसोसिएशन एंड द इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर के भी वो मेंबर बन गए। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की जब स्थापना हुई तो वो उसके फाउंडर्स में से एक थे, और फिर जब वो पूरे इंडियन मार्केट में छा गए, उन्हें अब ये मैदान छोटा लगने लगा। उन्हें लगा पूरे विश्व को अपना मैदान बनाना होगा, और उन्होंने देश की सीमा को लांघ लिया, सीधे न्यूयॉर्क पहुंचे और न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज के वो मेंबर बन गए। उन दिनों इंडियंस के लिए ये काफी बड़ी बात होती थी, मगर हौसले उनके बुलंद थे। वो ना सिर्फ वहां पहुंचे बल्कि अपना सिक्का भी जमा लिया। तो यहाँ मुझे भी हौसला बुलंद करके आपको कहना होगा कि एक ब्रेक ले लेते हैं। हालांकि जी तो चाहता है कि आपको एक कहानी कहता चला जाऊं, और सच मानिए तो मेरा खुद का मन तो करता है कि मैं टाइम मशीन से उस दौर में पहुंच जाऊं। फिलहाल तो टाइम मशीन ब्रेक पर ले जा रही है, क्या कीजिए, ब्रेक लीजिए और क्या कीजिए। लीजिए इस ब्रेक को, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा म्यूजिकल ब्रेक है। इसके बाद मैं फिर से इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए आऊंगा। देखिए, इस अचीवर सीरीज में आप जो इन बड़े बड़े बिजनेसमैन की कहानी सुन रहे हैं, उनके जीवन के उन पहलुओं से रूबरू हो रहे हैं जिनसे आप ये सीख सकते हैं कि क्या

मैं हूँ झुम झुम झुम झुम झुम रो फक्कड़ घूमू बन के घुमरो साथ में हम सफर न कोई कारवां भोला भाला सीधा साधा लेकिन दिल का हूँ

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: एक बार फिर से ब्रेक के इस पार आपका स्वागत है यार। मतलब बहुत सारे लोग जो मेरी उम्र के हैं वो मेरे यार, और जो मेरे से छोटे हैं उन्हें बहुत सारा प्यार, और जो मुझसे बड़े हैं उनका प्यार मेरे लिए। मुझे दे दीजिएगा रेडियो मस्ती 24/7 लाइव के फेसबुक पेज पर आकर। फिलहाल तो लेजेंड्स की अचीवर सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं गोविंद राम सेकसरिया साहब की। आप कभी इंडिया जाएं तो राजस्थान के शेखावाटी इलाके में जरूर जाएं। सारे मारवाड़ी, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे होंगे उनमें से कुछ तो मारवाड़ी होंगे जो राजस्थान के होंगे या जो शेखावाटी इलाके से परिचित होंगे, तो उनसे भी मिल सकते हैं आप। ये इंडियन कम्युनिटी जो यहाँ पर इतनी सारी है, इतनी बड़ी कम्युनिटी है, इनके अंदर भी वो बिजनेस का सेंस बड़ा कमाल का होता है। लेकिन मैं आपसे शेखावाटी इलाके में जाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ सारे मारवाड़ी व्यवसायियों की बड़ी बड़ी हवेलियां हैं। वहाँ उनका आर्किटेक्ट देखकर आप दंग रह जाएंगे। क्या खूबसूरत है, पत्थरों का रंग, जालियां, झरोखे, सब कमाल। आपको बहुत अच्छा लगेगा वहां पर, दावा है मेरा समर का। तो चलिए लेजेंड्स की इस महफिल में हमारे दरमियान हैं आज मारवाड़ी कॉटन बादशाह गोविंद राम सेकसरिया जी। तो उन्हीं की कहानी हम आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान के नवलगढ़ में आज भी उनकी विशाल पुश्तैनी हवेली खड़ी है, ये बताती हुई कि ही वॉज द कॉटन किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो जी हम कहानी में आते हैं फिर से, और हम पहुंच गए थे अमेरिका। यूरोप कॉपर, शुगर और गेहूं का बिजनेस अच्छा खासा चल पड़ा सेकसरिया साहब का। इसके साथ ही आप माने या ना माने, उनसे वर्ल्ड के उस वक्त के बड़े बड़े बिजनेस हाउस सलाह मशवरा करने आते थे कि क्या करें क्या नहीं करें, कहां दाम लगाएं, कहां पैसा लगाएं, कैसे व्यवसाय करें। ये उनका शातिर दिमाग था और पर्सनैलिटी बेहद सिंपल, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। एक दफा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट साहब, जो उन दिनों न्यूयॉर्क की एक बहुत बड़ी कॉटन फर्म के मालिक भी थे, वर्ल्ड टूर पर निकले, बॉम्बे भी आए, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना सेठ गोविंद राम जी से भी मिल लिया जाए, कुछ सीखने को ही मिलेगा। पहले इन जनाब की कभी मुलाकात हुई नहीं थी, तो साहब पहुंच गए सेठ जी के ऑफिस, किसी को कहलवा भेजा कि सेठ जी से मिलना है। बहुत देर तक वो देखते रहे गद्दी पर एक आदमी बैठा है, कुर्ता धोती पहने, और ढेर सारे लोग उसे घेरे खड़े। साहब को समझ नहीं आया कि ये कौन शख्स है। तब वहीं से किसी ने बताया कि यही तो हैं अपने सेकसरिया जी, गोविंद राम जी। जनाब भौचक्के रह गए, इतना बड़ा आदमी, इतनी सादा पोशाक। जी ये होती है बड़े लोगों की बात। तो इसी बात पर एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और भी बातें होंगी ऐसी ही रोचक और कुछ जानकारी भरी। तो कुल मिलाकर लबलुबाब ये कि सफलता

धड़कन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: वेलकम बैक। आज हम लेजेंड्स के सफर पर बात कर रहे हैं एक बहुत ही बड़े ट्रेडर गोविंद राम सिकसरिया जी की, जो पूरे वर्ल्ड में छा गए थे, खासतौर पर 3 सिग्निफिकेंट एंड बिग कॉन्टिनेंट्स, यूरोप, एशिया एंड अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका। लेकिन कुछ टाइम बाद दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंजेस में अपना असर डालने के बाद उन्होंने ट्रेडिंग से इतर इंडस्ट्रीज डालने की सोची। उन्होंने एक नई फर्म बनाई, गोविंद राम ब्रदर्स लिमिटेड। उन्होंने वेजिटेबल ऑयल बनाने की इंडस्ट्री, शुगर बनाने की, टेक्सटाइल्स, मिनरल्स, बैंकिंग, मोशन पिक्चर्स और प्रिंटिंग के क्षेत्र में भी हाथ आजमाए। हैदराबाद में पहली ऑयल मिल शुरू की, जिसमें कॉटन के बीज से ऑयल निकालने का काम शुरू किया गया। ये पहली दफा ही हुआ था जब जिन बीजों को वेस्ट समझा जाता था उनसे ऑयल निकालने का काम शुरू किया। यानी उनके पास आइडियाज थे, और आइडियाज ऐसे वैसे घिसे पिटे नहीं, इनोवेटिव आइडियाज, और जज्बा भी था। और यही नहीं, वो बैंकिंग में भी कूद पड़े, भारतीयों के लिए इंडियन बैंक की उस वक्त जरूरत को देखते हुए, ताकि न सिर्फ उनको काम के लिए पैसा दिया जा सके बल्कि उनकी जमा पूंजी की हिफाजत भी हो सके। और उन्होंने सबसे पहले बैंक बनाया राजस्थान बैंक। बैंक की ब्रांचेस बॉम्बे और सेंट्रल इंडिया में काम करने लगी। एक बात तो कहनी पड़ेगी, आकाश से पाताल तक उन्होंने हर अपॉर्चुनिटी को कैश करने की कोशिश की। पाताल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने माइनिंग में भी जाने का पूरा प्लान बना लिया था, और कोंकण के सावंतवाड़ी रीजन में माइनिंग का काम किया भी। माइका की माइनिंग की उन्होंने, और ये इलाके खाली पड़े थे, किसी पर इनका ध्यान ही नहीं था। माइका के बहुत बड़े डिपॉजिट्स थे इन जगहों पर। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन जहां न पहुंचे कोई भी आइडिया वहां पहुंचे सेठ गोविंद राम जी का आइडिया। ये अभी आप सुन लीजिए, ये होता था उस वक्त। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि क्या क्या बताऊं आपको, किस किस फील्ड की बात करें। पहले तो मुझे लगता था कि सिर्फ चाचा चौधरी का दिमागी कंप्यूटर से तेज चलता है, अब मुझे पूरा यकीन है कि सेठ जी से सब पीछे ही हैं। तो चलिए यहां पर एक छोटा सा

0: डॉग रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
0: They were not chosen. They were created.
2: Iski maa ka naam Jaan ki tha. Hum ise Sita bulawenge.
3: Alpha.
0: The newest chapter in the YRF spy universe.
4: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई।
0: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडियाज फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट।
5: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है।
0: बोर्न टू फाइट बिल्ट टू सर्वाइव। अल्फा रिलीजिंग 3rd जुलाई आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट।
6: कहानियां उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
7: हाँ जी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। इस्तकबाल आप है मेरे यानी समर के साथ और सुन रहे हैं लेजेंड्स द अचीवर्स सीरीज। आज हमारे साथ एक बहुत बड़े व्यवसायी हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उनके काम इतने बड़े हैं कि क्या बताएं आपको। दरअसल कुछ भी बड़ा करने के लिए आपके अंदर भूख होना जरूरी है, हर शय आपको काम लगे, आपको कहीं भी सेटिस्फेक्शन ना हो। और ये सब था गोविंद राम जी के अंदर। जानकारी के लिए भूख, नॉलेज की भूख जो कभी न मिट सकी, ऐसी भूख जो किसी भी चीज से न मिट सके। हमेशा औरों से ज्यादा इन्फॉर्म्ड रहना चाहते थे, सबसे आगे रहना चाहते थे वो। नेवर डू योरसेल्फ व्हाट यू कैन गेट अ राइट मैन टू डू, ये उनका गाइडिंग प्रिंसिपल था। वो कहते थे कि जब कोई व्यक्ति उस काम को परफेक्टली कर सकता है तो फिर उसे खुद क्यों किया जाए। जरूरी है कि उस आदमी का इस्तेमाल हो और ठीक से हो। इसके अलावा एक वर्ड में अगर उनको डिस्क्राइब करना हो तो वो है मॉडेस्टी। बहुत ही पोलाइट, एक तरह से मीडिया शाई। बहुत बड़े बड़े काम किए उन्होंने, लेकिन किसी भी न्यूज़पेपर से वो दूर रहे। बहुत चैरिटी करते थे, लेकिन कभी पॉलिटिकल इशू नहीं बनाया। बस कहीं अगर एक कमी थी तो वो थी उनकी एजुकेशन में। वो पढ़े लिखे नहीं थे और जानते थे पढ़ने की वैल्यू क्या है। उन्होंने कई बार अपने आप को असहाय भी महसूस किया। पढ़ा लिखा नहीं होने की वजह से उन्हें बहुत मुश्किलात आन पड़ी। शायद यही वजह थी कि उन्होंने एजुकेशन में चैरिटी की, जगह जगह स्कूल बनवाए, और सबसे पहला स्कूल जो उन्होंने बनवाया अपने होम टाउन नवलगढ़ में बनवाया, और ये था एक गर्ल्स स्कूल। हाँ जी, वो चाहते थे कि लड़कियां पढ़ें लिखें आगे बढ़ें। एक ब्रेक के बाद उनकी और भी कई

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर।
3: आपकी नॉलेज आपकी जीत।
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

इट गोविंद राम सिकसरिया की कहानी। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बहुत ही कमाल की शख्सियत गोविंद राम सिकसरिया। सिकसरिया साहब गांधी जी के अनुयायी भी रहे, और बल्कि मैं ये कहूंगा कि गांधी जी ही थे जिनसे वो मोटिवेट हुए इस बात के लिए कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन की फील्ड में काम करना चाहिए। जितना ज्यादा बच्चों को इलिमिनेट करेंगे, जितना ज्यादा एजुकेट करेंगे, उतना ही ज्यादा देश का भविष्य रोशन होगा। वेल, एक दफा गांधी जी ने बजाज ग्रुप के फाउंडर जमनालाल बजाज जी से कहा कि अगर पैसा दान करना है तो बच्चों के एजुकेशन के लिए करना चाहिए। जमनालाल जी तो गांधी जी के बहुत बड़े भक्त थे। इस बात पर उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और एजुकेशन फंड बनाया। इस फंड में सारे व्यवसायियों को पैसा डालने को कहा गया। तब जमनालाल जी के एक बड़े अच्छे जानकार श्रीनिवास जी बगरका ने सेठ गोविंद राम जी को ये बात बताई। सेठ जी को जब ये मालूम हुआ कि ऐसा किसी अच्छे कॉज के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, तो उन्होंने इस फंड को पूरा फाइनेंस करने की बात कह डाली। उन्हें लगा कि कहीं गांधी जी को पैसे कम न पड़ जाएं और बापू सोचें कि उनको नहीं पता वो कितना अमाउंट दे रहे हैं या क्या। उन्होंने बहुत सारा अमाउंट उस फंड में डाल दिया, यानी उस फंड को फुल कर दिया, फुल भर दिया। लगभग 4 लाख रुपए डाल दिए। उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ा सब्सटेंशियल अमाउंट था। फिर बापू ने इस अमाउंट को यूज करते हुए नागपुर, वर्धा, जबलपुर और खामगांव में कॉलेजेस बनवाए, और सबके सब गोविंद राम जी के नाम पर ही बने। लेकिन न सिर्फ एजुकेशन, बल्कि उन्होंने दूसरे सोशल कॉजेस के लिए भी बहुत पैसा दिया। बॉम्बे हॉस्पिटल में भी वक्त वक्त पर उन्होंने खूब दान दिया। उस वक्त के सबसे बड़े डोनर थे वो। इसके अलावा शायद आपको यकीन नहीं होगा, उन्होंने उसमें भी पैसा लगाया।

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
3: Are you ready?
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
5: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने। ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
6: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस्तकबाल में। आपको सुना रहा हूँ आज कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने विश्व भर में कॉटन किंग की उपाधि पाई, खूब कमाया, खूब दान किया। उनकी लाइफ का मोटो भी यही था, अर्न एंड गिव। इसी मोटिव के साथ पूरा जीवन जिया। अच्छा हाँ, मैं आपको एक और बात बता रहा था कि वो किस और काम से एसोसिएटेड रहे। ये था बॉम्बे टॉकीज। जी हाँ, बॉम्बे टॉकीज में वो फिल्म बनाने के लिए हिमांशु राय और देविका रानी को फाइनेंस किया करते थे। कहीं ना कहीं उन्होंने भारतीयों की नस पकड़ ही ली थी। उस वक्त फिल्म्स देशवासियों को जोड़ने का काम कर रही थी और फिल्में एकमात्र मनोरंजन का साधन हुआ करती थी और गुलाम भारत के लोगों में आजादी की भावनाएं जगाने का काम कर रही थी। जरूरत भी थी कि उनको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि तब तक लोग बहुत ज्यादा फिल्म्स देखा नहीं करते थे। जैसे नौटंकी हुआ करती थी, कमोबेश उसी तरह से फिल्म्स को लिया करते थे। फिल्म्स देखने जाना यानी बहुत छोटा काम माना जाता था और इवन प्रोफेशन में भी रेपुटेशन नहीं था। कलाकार कुछ फिल्म बनाने की सोचें तो भी पैसा था ही नहीं इतना। बॉम्बे टॉकीज फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भारत की पहली पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी और इससे भी सेठ जी जुड़ गए, इनडायरेक्टली ही सही। बॉम्बे टॉकीज बनाने से पहले भी फाइनेंसेस की जरूरत थी। उन दिनों एक बहुत बड़े व्यवसायी थे सेठ बद्री प्रसाद दुबे, लेकिन उन्होंने बॉम्बे टॉकीज को फाइनेंस करने से मना कर दिया क्योंकि वो पहले टॉकी आलमारा में पैसे लगा चुके थे और उनको कोई फायदा नहीं हुआ था। मगर उनके बेटे राजनारायण दुबे को मनाया गया, वो मान गए, यंग थे, वो फाइनेंस करने को तैयार हो गए। इसके अलावा एक और फाइनेंसर बने थे, वो थे हमारे आज के लेजेंड गोविंद राम सेकसरिया साहब। पर जब भी इंडिया की बात आती है उस दौर के, तो सारे एंगल्स जानने पड़ते हैं। तो चलिए फिलहाल

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल, मैं हूं आपका हमसफर समर और आज लेजेंड्स की इस महफिल में आपका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। आज हमने बात की हमारे आज के लेजेंड सेठ गोविंद राम सेकसरिया की। सेठ जी ने एक बहुत सादा जीवन जिया, बहुत नेक काम किए। उनके बाद उनके बेटे कुड़ीलाल जी ने उनका काम संभाला और जब वो उनको बिजनेस संभाला रहे थे उससे पहले उन्होंने 50 लाख रुपए दान कर दिए। ये उस दौर के हिसाब से एक फेबुलस अमाउंट था। इसके अलावा परिवार को भी उन्होंने पूरा वक्त दिया। उनका परिवार एक जॉइंट परिवार था, उनके तीनों भाई साथ ही रहा करते थे। उनको परिवार से इतना प्यार था कि अपने भाई और उनके बेटे के गुजर जाने के बाद वो बहुत दुखी हो गए थे और धीरे धीरे बेहद बीमार रहने लगे और साल 1946 में ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आजाद भारत का सपना तो उन्होंने भी देखा था पर सपना हुआ नहीं पूरा उनके रहते रहते। एक नेक नियत शख्स और विदा हो गया धरती से। अगर वो कुछ और जीते तो जरूर आजाद हुए भारत के विकास को कुछ और पंख लगा देते। भारत विश्व भर में व्यवसाय के क्षेत्र में और मजबूती से आगे बढ़ता। खैर, बाबा नागार्जुन के शब्दों में कहूंगा, जो हो नहीं सके पूर्ण काम मैं उनको करता हूं प्रणाम। फिलहाल मैं करता हूं आपको भी प्रणाम, दीजिए मुझे इजाजत। बस जाते जाते कुछ वादे करते जाइए कि आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएंगे, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएंगे और कुछ ऐसा कर जाएंगे।

0: डॉग रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: रात अकेली है तो क्या हम तो आपके

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर, मस्ती पे भक्ति में सुबह 6 बजे।
2: रात अकेली है
0: तो क्या, हम तो

0: जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगलू, प्यार में जवाब अपने आप पूछ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

0: दिल बोले तो
1: हार्ट हार्ट
2: हमा यार सौदा सौदा
0: ओहो
3: दोनों डील करा सील
1: टाइट टाइट वेरी टाइट।

नी ते किथे लौंदा फिरे गेड़िया जरिया नी जांदिया फ्रेंड मैथों तेरिया लंबरगिनी ते किथे लौंदा फिरे गेड़िया जरिया।

0: बात भी बाकी है मगर अभी रात अकेली है।
1: ये वो हित पे पिक्चर आ रही है ना?
2: कौन से?
1: बॉडीगार्ड। उसका टाइटल सॉन्ग एकदम फाड़ू है।
3: अच्छा, हीरो कौन है उसका?
4: तेरी।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

दिन की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: लाइफ इज जस्ट लाइक एन आइसक्रीम। आइसक्रीम पिघलती जाती है तो हम फोकसली उसे एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी लाइफ के डेज भी पिघलते जा रहे हैं, तो उन्हें भी थोड़ा फोकस्ड होकर एंजॉय कीजिए। कब ना जाने आप आखिरी बाइट ले, यू नेवर नो यार। तो चलिए चलिए चलिए, ये शो भी थोड़ा पिघलता ही जा रहा है। मतलब आपसे बात करना शुरू करती हूँ ना, पता ही नहीं चलता है कि कब जाके बातें खत्म हो गई, टाइम समाप्त हो गया। ऑन दिस नोट, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर वंस अगेन आपसे मुलाकात करने आ चुकी है। बाय द वे, आजकल एक्टर्स कितना कुछ बोल देते हैं यार। मतलब बोलते तो है ही, लेकिन सोचते भी नहीं है कि यार हमने ये बोल दिया है, कहीं इसकी नेगेटिव पब्लिसिटी ना हो जाए। हाँ चलो ठीक है, अब कौन से एक्टर ने क्या बोल दिया है और क्या कुछ डिस्कशन शुरू हो चुके हैं, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताने के लिए आ चुकी है। सो डोंट गो एनीवेयर, आती हूँ मैं गानों के उस पार।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
5: जीजी।
4: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GTMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GTMartOnline.com।
5: GTMart, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर,
2: नुपुर,
3: होते हैं भाई, होते हैं ऐसे एक्टर जो कि पेपराजी कल्चर से परेशान हो चुके हैं। हाँ, मैं अब जया बच्चन की बात नहीं कर रही हूँ। हर बार जया बच्चन जी को विलन बना देना अच्छी बात नहीं है। आरजे नुपुर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ। हाँ ठीक है, जिस तरीके से पेपराजी फोटोग्राफर्स गलत गलत एंगल से वीडियोस लेकर सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि गेस द सेलेब, वो चीज ठीक नहीं है। पर हाँ, वो जो पॉपअप्स निकल कर आते हैं ना कि डेली लाइफ में सेलिब्रिटीज कहाँ जा रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कुत्ता घुमा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, तो ये थोड़ा मजा तो आता है देखकर। हाँ, सो रिसेंटली सैफ अली खान ने भी बोल दिया है कि भैया उनकी लाइफ पेपराजी कल्चर से पहले ज्यादा बेटर थी और पेपराजी आने के साथ उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ है। अब सैफ को कोई बताओ यार कि ऐसा नहीं होता यार, मतलब वो वैसे भी जो फिल्मों में नजर आ रहे हैं वो फिल्में चल नहीं रही हैं और लोग उन्हें दिखा रहे हैं तो वो दिखना नहीं चाहते, है ना। आरजे नुपुर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, दिखाने और सुनाने की बहुत सारी बातें मेरे संग यहाँ मौजूद है।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो। You know what? मेरे घर वालों के बीच मेरी ऐसी इमेज बन चुकी है कि इस लड़की को चाहे जितना फोर्स करो ये तो खाएगी हेल्दी ही, रहने तो इसे अपनी दुनिया में। हाँ।

$5 में। नट्स मिल जाएंगे पिस्ताचियोज में, और भी वैरायटीज आपको मिल जाएगी। कैलिफोर्निया आमंड्स मिल जाएंगे, प्रीमियम रेजिंस आपको मिल जाएंगे 100 ग्राम $1.5 में। तो डील्स बहुत ही बेहतरीन है। प्लस चेरी ऑन द टॉप आप पिक कर सकते हैं जामुन ट्राइंगल्स जो कि 135 ग्राम $4 में आते हैं, एंड ये आप कैंडी की तरह खा सकते हैं। डेफिनेटली नॉस्टैल्जिक आपको फील होगा। मैं आरजे इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
3: हाँ जी जी,
2: आधा केजी मसूर दाल,
3: जी जी,
2: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
3: जी जी,
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
2: क्या जी?
3: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
2: वाह जी, क्या बात जी।
3: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: They were not chosen.
1: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
2: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
3: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई.
2: Alia Bhatt and Sharvari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
4: Alpha program uska junoon hai, aur jo bhi uske raaste mein aata hai, wo use maar deta hai.
2: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island-wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.
5: आर्चे गया एग्जिट पर और गाने आ गए
2: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर. चेक इट आउट.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में रहो।
0: एक से काम नहीं चलेगा, दो तो होनी चाहिए। क्या गाड़ी के टायर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लाइफ पार्टनर की भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं 1+1 फ्री वाली डील की भी बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, मूवी में जब कोई एक ही एक्टर होता है, उसी को बार बार दिखाया जाता है, तो लोग थोड़ा बोरियत फील करने लग जाते हैं। मतलब मैं मेन कैरेक्टर की बात कर रही हूँ, साइड वाले कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ। वरना तो मूवी बिना लीड एक्टर्स के भी चल ही जाती है, अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो तो। हाँ जी, मैं आज मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। एंड अगर मैं बात करूं किसकी, अरशद वारसी की, तो उन्होंने एक कन्फेशन किया है। तो अरशद वारसी ने कहा है कि जॉली LLB 2 मूवी के लिए पहले अक्षय कुमार को कास्ट नहीं किया जा रहा था, लेकिन अरशद वारसी ने जिस तरह से सजेशंस दिए कि भाई बिना अक्षय कुमार के वो मजा नहीं आएगा जो मजा आ सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो फिल्म मेकर्स का जो एक वो होता है ना डायरेक्शन, तो थोड़ा चेंज हुआ। और उसके बाद जो है ना, वो एक मेन कैरेक्टर में अरशद वारसी के साथ साथ अक्षय कुमार को भी लिया गया। तो देखो, बॉलीवुड में कास्टिंग, बहुत सारे डिस्कशंस, बहुत सारे कंक्लूजन्स पहले ले लिए जाते हैं, फिर बाय द टाइम उन्हें रिवील किया जाता है। मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, जो रिवील करेगी थोड़ी सी देर में कि भैया आप घर बैठे बैठे कहीं तो घूमने जा सकते हैं।

फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती।